वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारेंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

तोहा सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तोहा सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तोहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेक्ट श्रोताओ तोहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

कानवा दशमलव 2 MHz पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार होना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
9: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
6: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
15: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओ, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।
1: आलू की भाजी बैंगन का भरता, आलू की भाजी बैंगन का भरता।

0: तकना तकना आओगे।
1: ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।
1: बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने,

91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

0: ऑडियो जंगल
1: है आपको उन्नत मिसाइलें देगा भारत। दोनों देशों में 14 समझौते, शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होंगे और कार्यालय, 43,000 बिजली बोर्ड कर्मियों और पेंशनरों को मिलेगा 1.5 करोड़ तक का बीमा कवर, विंटर वेकेशन स्कूलों में छुट्टियों का लाभ ले चुके स्थानांतरित शिक्षकों को नहीं मिलेगी मानसून ब्रेक, पीएम सेतु योजना को देश भर में लागू करेगी सरकार, ऐसा पहली बार बाबा बर्फानी 5वें दिन ही अंतर ध्यान, 3 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं। अब समाचार विस्तार से।

अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने कहा कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर खेल, नवाचार, रचनात्मक गतिविधियों और समाज सेवा से जोड़ना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि युवा ही देश का भविष्य है और सही समय पर इन्हें सही राह दिखाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक शिक्षित, स्वस्थ, नशे और अन्य व्यसनों से मुक्त युवा ही देश के भविष्य निर्माण में सहायक हो सकता है। उपायुक्त कार्यालय के NIC सभागार में आयोजित मैं भारत की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित एंटी चिट्टा अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, आपदा प्रबंधन तथा अन्य सामाजिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में मैं भारत के स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा। इससे युवाओं को समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची परमानेंट वेटलिस्ट को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आवास प्लस सिस्टम में पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल आरंभ किया गया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विलोपन प्रक्रिया डिलीशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ये मॉड्यूल ग्राम सभाओं को सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची की समीक्षा करने, लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने और निर्धारित पात्रता एवं प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने की सुविधा प्रदान करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रत्येक संशोधन का कारण प्रणाली में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा

देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने इस्तेमाल की गई और खाली कांच की बोतलों की रिसाइकलिंग के लिए वाईवाई योजना की मानक संचालन प्रक्रिया SOP को लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों को HPMC के खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा बल्कि योजना से जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक धर्मशाला स्थित सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियों को लेकर आज मिनी सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भर्ती रैली के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने SDM एवं तहसीलदार धर्मशाला को रैली का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SII के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE धर्मशाला द्वारा कबड्डी खेल में बालिका खिलाड़ियों के लिए 15 से 16 जुलाई 2026 तक चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। सहायक निदेशक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को SAI के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय कोचिंग, खेल किट, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं एवं उपकरण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, शैक्षणिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं तथा खेल विज्ञान विशेषज्ञों का सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई शिखर वार्ता में भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की आपूर्ति पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब हमारे दोनों देशों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। उनका कहना है कि 2018 में स्थापित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी अब विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में नई गति प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 7 इम्पैनल्ड बैंकों के साथ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से बोर्ड से जुड़े करीब 43,000 कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। विद्युत भवन कुमार हाउस शिमला में आयोजित कार्यक्रम में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बोर्ड की ओर से मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि संबंधित बैंकों की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। राज्य के समर वेकेशन स्कूलों में 12 जुलाई से मॉनसून ब्रेक शुरू हो रही है जो 12 अगस्त तक जारी रहेगी। हालांकि विंटर वेकेशन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां 7 से 12 अगस्त तक होंगी। ऐसे में जो शिक्षक इस शैक्षणिक सत्र में विंटर वेकेशन स्कूलों में 42 दिन की छुट्टियों का लाभ उठा चुके हैं और उनके तबादले या उनके डेपुटेशन समर वेकेशन स्कूलों में हुआ है, उन्हें अब 12 जुलाई से 12 अगस्त तक होने वाली छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और बाबा बर्फानी 5वें दिन यानी मंगलवार को लगभग अंतर्ध्यान पूरी तरह से पिघलना शुरू हो गए। पिछले साल ऐसे यात्रा के 7वें तो इससे पहले 10वें दिन हुआ था। यानी हर साल हिमलिंग के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। इस बार 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और अब तक 1 लाख यात्री ही दर्शन कर पाए हैं। 3 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 3,880 मीटर ऊपर

यानी पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ का हिमलिंग हर साल प्राकृतिक रूप से आकार लेता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अफसरों ने भी स्वीकार किया है कि हिमलिंग अब समय से पहले पिघल रहा है। सूत्रों की माने तो बोर्ड अगले साल से यात्रा की शुरुआत 25 जून के आसपास करने पर विचार कर रहा है, ताकि हिमलिंग कम से कम 10 से 15 दिन बना रहे। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला शुरू हो चुका है। सभी सुनने वालों को पिंकी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सबसे पहले चलते हैं और जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 91%। और मौसम की बात करें तो इस समय मौसम बहुत सुहावना है, धूप खिली हुई है हम कह सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। और हिमाचल की बरसात हर बार कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के आती है। हम इसे मौसम का या बरसात का तांडव कहें तो भी कोई दो राय नहीं होगी। और ऐसे बरसात के मौसम में हम अक्सर कहते हैं कि सावधानी से चलिए, वाहन सावधानी से चलाइए, और जो अनावश्यक यात्राएं हैं उन्हें टाल दीजिए। चलिए, यात्राओं के बारे में भी कार्यक्रम में आगे बात करेंगे और भी ढेर सारी बातें अपने श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे, साथ ही साथ सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गीत। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत।

1491.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आपके साथ आज का विचार साझा करने का, तो आइए सुनते हैं क्या कहता है हमारा आज का विचार। श्रोताओं, भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद की जाएगी वह उतना ही निराश करेगा, इसलिए हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। आज का विचार फिर से दोहरा रहे हैं कि भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद की जाएगी वह उतना ही निराश करेगा, इसलिए हमेशा कर्म पर विश्वास रखें।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और हमने साझा किया आपके साथ आज का विचार कि भाग्य से हम जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वो हमें उतना ही निराश करेगा, इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखें। जी हाँ श्रोताओं, हम में से बहुत से लोग जो हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं कि हमारे भाग्य में जो है हमें उतना मिलेगा या भाग्य में जो लिखा है वही हमें नसीब होगा, और इसी भरोसे हम अपनी कई बार पूरी ज़िंदगी, कई बार आधी ज़िंदगी जो है वो काट देते हैं और कर्मों की ओर हम जो है वो कम ध्यान देते हैं। जबकि कहते हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो भी हमारे भाग्य को बदल देते हैं अगर हम अपने कर्मों में विश्वास रखेंगे और कर्म करते जाएंगे। इसलिए हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है श्रोताओं, हमें अपने कर्म करने हैं और कर्म भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कर्म करें जिससे अपना भी भला हो, बाकियों का भी भला हो। हमारे कर्मों से ना किसी का दिल दुखे और ना ही किसी को किसी प्रकार का आघात पहुंचे। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विचार कि कर्मों पर विश्वास रखें और कर्म जितना हो सके अच्छे कर्म करें। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और इस समय आप हमें रेडियो के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पर देख भी सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में गीत संगीत भी है और जानकारियां भी साझा करेंगे आपके साथ, बातें भी कर रहे हैं श्रोताओं आपके साथ, और ये जो पैकेज है मिला जुला गीत संगीत बातों का जानकारियों का, ये अब से लेके 11 बजे तक आपके साथ यूं ही चलता रहेगा। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। इस वक्त लाइव हमें सुन भी पा रहे हैं और लाइव आप अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप हमें देख भी सकते हैं श्रोताओं। चलिए, बातों का सिलसिला अब यहाँ पे रोकती हूँ मैं और सुनवाती हूँ आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम जारी रहेगा 9:30 पर भी। और अब समय है प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल शिमला आने का कार्यक्रम, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, किसानों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता। एचपीएमसी ने रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए कांच की बोतलों की बाय बैक योजना की शुरू। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के चलते रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी। मौसम विभाग का आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 10 जुलाई को शिमला आने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति इस दौरान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मकता और संघवाद का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वंदे मातरम एक यात्रा विषय पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। संगोष्ठी में देश विदेश के इतिहासकार, संवैधानिक विशेषज्ञ, राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री, विधि विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और शोधकर्ता भाग लेंगे। इस संगोष्ठी में हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब की पहाड़ी रियासतों और ओडिशा के एकीकरण समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। इस दौरान जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद भी ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के मकसद से कृषि विभाग में एक अलग मार्केटिंग विंग की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे

0: समृद्ध बने, इसी मकसद से सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं, इसी दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। एचपीएमसी ने पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई वो खाली कांच की बोतलों की रिसाइकलिंग के लिए बायबैक योजना शुरू की है। इस पहल का मकसद उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं व वितरकों को एचपीएमसी खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा बल्कि इससे जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। योजना के तहत उपभोक्ता को अधिकृत रिटेलर के पास 200 मिलीलीटर प्रत्येक खाली बोतल जमा करवाने पर ₹1 और 600 मिलीलीटर की बोतल पर ₹2 मिलेंगे। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व धार्मिक स्थलों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए हवाई संपर्क का विस्तार, हेलीपोर्ट व रोपवे परियोजनाओं का निर्माण, जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा जैसे अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयास करना जरूरी, वो हम सब मिलकर कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म आगे बढ़े और जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो एक अच्छी सुविधा लेके जाए और जो लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, उनका व्यवसाय, उनकी आमदनी आगे बढ़े, यही हमारा प्रयास है।
0: केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के तहत धर्मशाला के चरान में लगभग 7.5 करोड़ की लागत से आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि इसके संचालन से क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी जिसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों व लघु उद्यमियों को मिलेगा।
2: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने चरान क्षेत्र में लगभग 7.50 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया है। यह परियोजना न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगी। इस आधुनिक परिसर के शुरू होने के बाद चरान और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को खरीदारी, मनोरंजन और जरूरतों से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। इससे उन्हें छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए शहर के अन्य हिस्सों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिणाम स्वरूप लोगों के समय और यात्रा खर्च दोनों में कमी आएगी। यह परियोजना केवल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने का भी माध्यम बनेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन व जनविरोधी निर्णयों का बोलबाला है जबकि विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों का खुलासा भाजपा तथ्यों व प्रमाणों सहित अपनी चार्जशीट में करेगी ताकि प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली और कथित भ्रष्टाचार की वास्तविक तस्वीर देख सके। हमीरपुर जिला के नादौन स्थित मिनी सचिवालय परिसर में भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा बलों के वर्तमान व पूर्व सैनिकों और शहीदों के सम्मान में राष्ट्र सम्मान स्थल स्थापित किया गया है। ये स्थल लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को प्रेरित करने के मकसद से बनाया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
3: सचिवालय के मुख्य द्वार पर अशोक चिन्ह, तिरंगे झंडे और सैनिक की राइफल और हेलमेट के प्रतीक स्थापित कर वीर जवानों के त्याग, समर्पण और शौर्य को नमन किया गया है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने हमेशा सर्वोच्च समर्पण और बलिदान का परिचय दिया है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए ये स्थल विकसित किया गया है, ताकि यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वीर सैनिकों के योगदान को याद कर सके। हिमाचल और हमीरपुर को वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। ये स्थल न केवल सैनिकों और उनके परिजनों के

0: सम्मान का प्रतीक बनेगा बल्कि युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय सेवा की भावना को भी प्रेरित करेगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर ट्रैकर्स के फंसने, लापता होने और दुर्घटनाओं की दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 10 प्रमुख ट्रैकिंग रूटों की पहचान की गई है और आदेशों के अनुसार चिन्हित रूटों पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति या समूह को संबंधित चेकपोस्ट पर व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं के लिए आगामी 1 से 14 अगस्त तक धर्मशाला में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने धर्मशाला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए भर्ती रैली के सफल व सुव्यवस्थित आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मॉनसून के मद्देनजर सभी विभागों को तैयारियों को समयबद्ध पूरा करने को कहा ताकि किसी भी चुनौती या आपात स्थिति से निपटा जा सके। राजधानी शिमला व किन्नौर सहित प्रदेश के कुछ भागों में मॉनसून की सक्रियता के चलते रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। विभाग ने आगामी 14 जुलाई तक प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में बनेगा AI विश्वविद्यालय, साइबर सुरक्षा समेत कई कोर्स होंगे। पंजाब केसरी के शब्द हैं, ट्रेनी व जॉब ट्रेनी कर्मचारी परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण से बाहर होंगे। दिव्य हिमाचल लिखता है, सितंबर में होगी बल्क ड्रग पार्क की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी करने के निर्देश। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, देश में कुल 7,791 स्कूल बंद हुए, इनमें से 266 हिमाचल प्रदेश के। दैनिक जागरण की एक खबर है, नशा माफिया की डिजिटल नस दबाएगी STF, मोबाइल फोन, UPI, बैंक खाते और डिजिटल वॉलेट की होगी अनिवार्य जांच। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में सक्रिय हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, अलर्ट जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का कल शिमला आने का कार्यक्रम, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, किसानों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता। HPMC ने रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए कांच की बोतलों की बाय बैग योजना की शुरू। सांसद राजीव भारद्वाज ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों को ठप करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के चलते रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी, मौसम विभाग का आज 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं और सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। और श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के बाद अब आपके लिए एक प्यारा सा गीत, हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए, आप सबके रेडियो सेट्स पर।

शुद्ध 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। हिमाचल प्रदेश में आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से बीते कल धर्मशाला स्थित HPTDC होटल द धौलाधार के कॉन्फ्रेंस हॉल में दर्शन हिमाचल प्रदेश में आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन पर राउंड टेबल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। मुख्य अतिथि RS बाली ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं विरासत पर्यटन के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा, इस चर्चा से प्राप्त सुझाव प्रदेश में पर्यटन के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास की रणनीति तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य कर रही है और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओं, जानकारी आपके साथ साझा की कि किस तरह से कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की गई है और कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं कि जिस कांगड़ा को या जिस धर्मशाला को हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं या और भी अधिक पर्यटन की राजधानी बनाने के लिए हम बड़े बड़े दावे और घोषणाएँ कर रहे हैं, वहीं अगर हम धर्मशाला की सड़कों का हाल देखें तो बहुत बुरे हाल हैं। मैक्लोडगंज भागसुनाग, जहां दुनिया भर से लाखों की तादाद में पर्यटन आते हैं और वो अब नहीं आ रहे हैं, वो कई सालों से आते हैं। जब इसे पर्यटन की राजधानी घोषित नहीं भी किया गया था तब से ये पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, हैरानी की बात और दुख की बात ये है कि हम सभी दावे करते हैं और जो सड़कें पिछले साल की बरसात में धंसी हैं, टूटी हैं, वो आज दिन तक ठीक नहीं हो पाई हैं। चाहे हम धर्मशाला काला पुल को जो रोड निकलता है उसकी बात करें, उसमें एक साल से डंगा लग रहा है, वो अभी तक लेवल में नहीं आ पाया है। दूसरी ओर खड़ा डंडा रोड की बात करें तो वहाँ पे भी लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से पहले धक्का वगैरह मार करके अपनी बाइक्स को निकाल लेते थे और जैसे तैसे मिट्टी विट्टी डाल करके उस सड़क को आने जाने लायक जो है स्थानीय लोगों के कह सकते हैं किया गया। वहीं अगर आपकी धर्मकोट टिप्पा रोड की बात करें तो टिप्पा जो अंतर्राष्ट्रीय जहां पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे मैक्लोडगंज से आगे, अब मैं नाप तोल के तो नहीं बता सकती, लेकिन जो स्थानीय लोग वहां से आते जाते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को जो है वो समझ पा रहे होंगे। तो टिप्पा, मैक्लोडगंज, धर्मकोट, इतनी अधिक तादाद में वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ की सड़क का इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे जाने अनजाने हो सकता है कल को कोई ना कोई घटना या दुर्घटना सुनने को मिल जाए। तो मेरा ये सारा वृतांत आपको सुनाने का मकसद श्रोताओं यही था कि हम जो हैं, हम सब लोग, हम चाहे आम जनता कहें या जो भी है जनमत, हम सब कुछ बदलने की जो है वो सोच रखते हैं, लेकिन पिछले एक साल या डेढ़ साल से कहें कि ये तीन जगह जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी धर्मशाला में है, इतने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं और हम आए दिन रोज़ अपने मंत्रियों से ये सुनते रहते हैं कि हम पर्यटन में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे तो लगता है सिर्फ दावे ही कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वाकई में होना चाहिए। कम से कम जो रोड मैक्लोडगंज को कनेक्ट करते हैं
उन पे तो विचार किया ही जाना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि इस बार की बरसात उन अध बने जो रोड हैं हमारे, उनको फिर से उसी तरह से बहा ले जाएगी और भी बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा ना हो, इससे पहले अगर मेरी ये बात कहीं किसी तक पहुँचे और ये उन हमारे देश के या कहें कि प्रदेश के जो सुधारक हैं उन तक पहुँचे, तो कुछ ना कुछ सुधार इसमें हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर।

शुद्ध 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में श्रोताओं अब चलते हैं इतिहास की ओर, जानते हैं क्या कुछ खास घटा था इतिहास में आज के दिन।

श्रोताओ, 9 जुलाई को भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन, जो कि 9 जुलाई 1949 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन अर्जेंटीना का स्वतंत्रता दिवस, जो कि 1816 मनाया जाता है। इसके अलावा इस तारीख को और भी बहुत कुछ खास होता है इतिहास में, उसके बारे में भी

भारत में शेयर बाजार 9 जुलाई 1875 को एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना आज ही के दिन यानी 9 जुलाई को हुई थी। और श्रोतो, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आज के दिन दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है आज के दिन को, जैसे कि नेशनल डिम्पल डे और कॉल ऑफ द होराइजन डे।

1969 को बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। श्रोताओं, 9 जुलाई को अर्जेंटीना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब फिर से सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपकी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि जुलाई शुरू हो चुका है और बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन वहीं बात करें हिमाचल या फिर धर्मशाला के ही कुछ एक इलाकों की, तो वहाँ पर बारिश धर्मशाला के मुकाबले कम होती है। और सुबह सुबह मेरी बात हो रही थी किसी के साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो खेती है, धान की खेती, वो निर्भर करती है बारिश के पानी के ऊपर। और मैंने कहा मैं धर्मशाला से थोड़ा ऊपर से आती हूँ, जहाँ पे आजकल बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, और कई बार तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं समय पे स्टूडियो पहुँच पाऊँगी या नहीं। और इसी तरह से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपके वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश है और हमारे यहाँ खेत जो हैं वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और कब हम धान की जो ऊर है उसको रोपें और कब हमारी भी फसल जो है वो लहलहाए। तो श्रोताओं, ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे ही धर्मशाला या यूँ कहें कि कांगड़ा के 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में इस तरह का जो है वो मौसम रहता है, कहीं पर बारिश होती है और कहीं पर बारिश का नामोनिशान नहीं होता। और ऐसा ही होता है जब गग्गल या कांगड़ा या इस तरफ नीचे की हम बात करें, जहाँ पे बारिश नहीं होती, धूप खिली होती है और ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो रही होती है, और वो बारिश जब खिलती हुई धूप जहाँ पे होती है वहाँ नालों में, खड्डों में या नदियों में जब वो बारिश का एकदम से बहाव वहाँ पहुँचता है, तो फिर इस तरह से दुर्घटनाएँ होती हैं। तो आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कई बार पर्यटक जो बाहर से आते हैं, पंजाब से या अन्य शहरों से, वो इसी उसमें होते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कब पानी का बहाव उन्हें बहा ले जाता है पता नहीं होता। और इसी तरह की दुर्घटनाएं हमारे लोकल्स के साथ भी बहुत बार हुई हैं। तो फिर से एक बार आपको एक तरह से हम चेताना चाहते हैं कि खासकर बरसात के मौसम में ऐसा अक्सर होता है कि जब कांगड़ा में, गग्गल में या नगरोटा की बात करें या आगे पीछे जो पहाड़ी इलाकों से थोड़ा मैदानी हमारे स्थान है, वहाँ बारिश नहीं होती, और नड्डी, मैक्लोडगंज या ऊपर की बात करें हम करेरी वगैरह साइड की, तो यहाँ पे कंटिन्यू बारिशें जो है वो चलती रहती हैं। और बारिशें पहाड़ों पे होंगी तो उसका बहाव जो है वो नीचे की ओर ही होगा और फिर होती हैं दुर्घटनाएँ। तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए अगर आप नदी नालों में कुछ भी काम कर रहे हैं, रेता बजरी ढो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, या इंजॉय करने के लिए वैसे ही गए हैं पिकनिक वगैरह के लिए, तो बचिए इन दिनों में जाने से। और अगर जाना भी है तो सिर्फ अपना ही इलाका मत देखिए, थोड़ा सा नज़र ऊपर पहाड़ों की ओर भी दौड़ा लीजिए। अगर बादल छाए हुए हैं और आपको धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा है, तो यकीन मानिए पहाड़ों पे बारिश हो रही होती है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान में रख करके हम अपना जीवन, अपने आसपास के लोगों का अनमोल और कीमती जीवन जो है वो बचा सकते हैं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में फिर से एक जानकारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। इनमें से 19 श्रेणियों के 2,668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है, जबकि 800 अस्थायी अंग्रेजी व गणित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जा रही है। संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ड्राइंग, विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ललित कला तथा लोक प्रशासन विषयों के शिक्षकों की भर्ती भी शीघ्र पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की जन कल्याणकारी पहलों को निर्धारित समय सीमा में प्रभावी ढंग से लागू

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर। श्रोतो कांगड़ा जिले की धौलाधार पर्वत श्रृंखला के विभिन्न ट्रैकिंग रूटों पर हाल के समय में ट्रैकर्स के फंसने, लापता होने तथा दुर्घटनाओं का शिकार होने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मानसून के दौरान भूस्खलन, घना कोहरा, फ्लैश फ्लड, कम दृश्यता तथा फिसलन भरे रास्तों के कारण ट्रैकिंग गतिविधियां अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती हैं। कई मामलों में ट्रैकर्स द्वारा अपनी यात्रा की पूर्व सूचना अथवा निर्धारित मार्ग की जानकारी साझा नहीं किए जाने के कारण खोज एवं बचाव अभियान लंबा, चुनौतीपूर्ण तथा संसाधन गहन बन जाता है। इससे न केवल ट्रैकर्स बल्कि बचाव दल के सदस्यों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा जिले के 10 प्रमुख ट्रैकिंग रूटों की पहचान की गई है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला में 3600 मीटर से 4600 मीटर तक की ऊंचाई वाले इन ट्रैकिंग रूटों में बलेनी, मिनिक्याणी, भीम घसूतड़ी, इंद्रहारा, कुंडली, तोराल, तालंग, सिंघाड़, बरू तथा जालसू पास शामिल हैं। इन सभी ट्रैकिंग मार्गों के प्रारंभिक बिंदुओं पर आपदा प्रबंधन चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे, जो प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से साय 5 बजे तक संचालित रहेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं श्रोताओं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। श्रोताओ गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुन रहे सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गुड मॉर्निंग धर्मशाला देख रहे हमारे अगर दर्शक हैं फेसबुक पेज पे तो उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। श्रोताओं फिर से रुक कर रहे हैं बातचीत की ओर, और बातचीत का अभी जो विषय रहेगा वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं गंभीर है। बरसात के दिन है श्रोताओं, और बरसात के दिनों में आप सभी जानते हैं कि जो लैंडस्लाइड होती है बारिशों की वजह से रास्ते टूटते हैं, और बहुत सी ना चाहते हुए भी जाने अनजाने ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनका हमें बहुत दुख होता है। और कई बार ये घटनाएं जो है वो हमारे परिवार या रिश्तेदार या आसपास के लोगों के साथ ही जब बीतती हैं तो दुख और भी हम कह सकते हैं गहरा होता है। अक्सर अखबार में हम पढ़ते हैं कि शिमला में ये दुर्घटना हुई, या हिमाचल प्रदेश के किसी भी राज्य की बात करें या इंडिया की बात करें, तो जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ वहाँ कहीं दूर हुई तो थोड़ी देर के लिए मन दुखी होता है, फिर हम उस बात को थोड़ा सा भूल जाते हैं। लेकिन इस तरह की कोई घटना हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही पास या हमारी रिश्तेदारी में आसपास कहीं घटी हो दोस्तों, तब मन बहुत दुखी होता है। और उस वक्त हमें लगता है कि काश समय रहते हमने सिचुएशन संभाल ली होती तो बेहतर रहता। और श्रोताओं आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारे नरघोटा में जो रोड के पास एक गाड़ी खड़ी की थी, और युवक 26-27 साल का, बहुत ही युवा, और जो उसके परिवार के लोगों की भी बातचीत जब हमने सुनी इंटरव्यूज़ वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और ये बिल्कुल हमारे पास की लगती ही जो नरघोटा पंचायत कहें या वहाँ का ये वाक्या था। और समस्या यहाँ पे भी ये थी कि पिछले साल की जो टूटी हुई सड़कें थी उनका अच्छी तरह से जो है निर्माण ठीक से नहीं हो पाया था, और दुर्घटना उसी जगह पर हुई। और ये तो वजह ऐसी थी। और हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है कि नड्डी डल झील से बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो कि परिवार के साथ चंबा घूमने गए थे, और गाड़ी के ऊपर पत्थर गिरा और बच्ची की जान चली गई। गाड़ी में बैठे हुए बाकी जो 3-4 सदस्य थे, हल्की फुल्की चोटें उन्हें भी आई, लेकिन उस बच्ची की मौके पर वहीं मौत हो गई। और हमने जब ये समाचार पत्रों में पढ़ा या ये खबर सुनी तो हमें लगा कि एक और एक्सीडेंट हुआ और किसी की जान चली गई। लेकिन जब बात फेसबुक पे लोगों ने पोस्ट डालनी शुरू की और मैंने उस बच्ची का चेहरा देखा तो मुझे लगा ये बच्ची तो मैंने देखी हुई है। और जब मैंने फ़ोन किया अपने किसी रिश्तेदार को तो पता चला कि वो बच्ची हमारे ही रिश्तेदारी में से किसी की, मेरी कज़न ही कह सकते हैं, उनकी वो बच्ची थी। और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, और दुख इसलिए नहीं हुआ कि वो मेरे रिश्तेदारी से थी और मेरे परिवार से थी, दुख इसलिए हुआ क्योंकि पिछले ही महीने उस बच्ची का जो है वो जन्मदिन मनाया गया था, और सौभाग्य से उस दिन मेरा भी उनके यहाँ जाना हुआ। तो वो दोनों बहनें और उसके चाचा जी की बेटी आपस में गुब्बारे फुला रही थी, घर को डेकोरेट कर रही थी, और वो खुशी का माहौल, बर्थडे सेलिब्रेशन, और उसी बच्ची का बर्थडे था। और जब मैंने वो सीन रिमाइंड किया तो मुझे इतना दुख हुआ कि खैर दुख तो जान के जाने का हर किसी को होता है, लेकिन जब कोई आपका चिर परिचित जाता है और वो भी इतने करीब से आपने उन्हें देखा हो, उन्हें, उनके साथ समय बिताया हो, तो दुख और भी गहरा होता है। और उन माँ बाप पे सोचिए क्या बीत रही होगी जिनका इतना बड़ा बच्चा पाल पोस के, जिसको बड़ा किया था, वो इस दुनिया से चला गया। और जहाँ तक उसकी माँ की बात थी वो ये कह रही थी कि मैं अपनी बच्ची को क्यों ही अपने साथ लेकर के गई थी, या हम घूमने ही क्यों ही गए थे। तो श्रोताओं मैंने ये बात और ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि मैंने पहले भी अपने फेसबुक पेज पर आकर के एक बात कही थी कि 2 महीने पहले मैं डलहौजी गई थी तो वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी और 6 लोग मौके पर मारे गए थे। और ऐसे में यूँ कहें कि खासकर बरसात के दिनों में हम कोशिश करें कि
ना ही घर से निकले। अब तीर्थ स्थान पर हम दर्शन करने जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, कोई देवी देवता के दर जाकर के अगर वापसी में उनकी मृत्यु हो जाए तो हम लोगों का भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। तो ये ईश्वर पर हमारा जो श्रद्धा है, आस्था है, वो भी बनी रहे। और कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकले, खासकर जब स्लाइडिंग हो रही हो, इस तरह का मौसम हो, और घर से निकलें खुशी खुशी घूमने के लिए तो सारा परिवार एक ही गाड़ी में सवार होकर के कृपा करके ना निकलें। अलग अलग जा सकते हैं आप। और वैसे तो कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होता, भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है कि कब किसका जन्म होगा और कब किसी की मृत्यु होगी। लेकिन समय बीत जाने के बाद या इस तरह की दुर्घटनाएँ हो जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि काश समय रहते हमने ये सुधार कर लिया होता, या हमने इस तरह से अपनी जो है वो प्लानिंग नहीं की होती। तो श्रोताओं, आप सब से एक बार फिर से और देखने वाले दर्शकों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि बरसात के दिनों में कहीं लंबी चौड़ी यात्राएं आप ना प्लान करें, और आपको जाना पड़े तो मौसम विभाग की जानकारियों को ध्यान में रख कर के निकलें, और ईश्वर की दी हुई इस अनमोल ज़िंदगी को आप यूँ ही मत गवाएं। 91.2 MHz पर श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और थोड़ा सा दिल जो है वो दुखी हो रहा है इस बात को आपके सामने रखते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी भी था। ध्यान रखिए अपना, अपने अपनों का। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और आप हैं इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओ, अब इंजॉय कीजिए कार्यक्रम में, कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोतो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोतो, मॉनसून की बात हो रही है और बरसात के दिनों में यानी मॉनसून में स्कूल के बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं। जहां ये छुट्टियां पहले काफ़ी लंबी होती थी, जब तक पूरी बरसात चलती थी तब तक छुट्टियां होती थी, या यूं कहें कि जब हम स्कूल जाते थे तो पूरी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक जो है वो छुट्टियां होती थी, और तब हम घरों में होते थे और घरों से स्कूल का जो छुट्टियों का काम, खासकर छुट्टियों का काम हमें दिया जाता था। बड़े बड़े रजिस्टर खरीद के हम लाते थे और उसमें घर में बैठ के छुट्टियाँ भी बिताते थे और छुट्टियों का काम भी करते थे। और बात करें आजकल की, तो आजकल स्कूल में मॉनसून की ब्रेक बच्चों को होती है, किसी स्कूल में 10 दिन की होती है, कहीं पे 15 दिन, और बहुत ही अधिक अगर छुट्टियां हैं तो 1 महीने की। और ये 1 महीने की छुट्टियां जब तक चलती हैं तब तक, खैर बारिश तो तब भी होती है, लेकिन जब इनकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं बच्चों की, उसके बाद जब स्कूल शुरू होते हैं तो अभी अगस्त का महीना पड़ा होता है और सितंबर तक कई बार धर्मशाला में जो है वो बारिश होती है। तो बारिशों की वजह से बच्चों को फिर परेशानी होती है, उनके अभिभावकों को, माता पिता को भी परेशानी होती है, और इस परेशानी का इलाज तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जहाँ पहले इतनी लंबी छुट्टियाँ होती थी वहाँ अब पूरे शिक्षा विभाग के साथ मैं लड़ नहीं सकती और मेरी एक अकेले की आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि छुट्टियों में बदलाव होना चाहिए तो एक बार ज़रूर, और जहाँ तक बात करें इस वक्त के हमारे जो DC साहब हैं वो इस तरह की चीज़ों में या इस तरह की जो समस्याएं हैं उनमें वो बहुत गहराई से विचार करते हैं और उसके अनुसार वो जो है अपना निर्णय लेते हैं, और वो सब की भलाई के लिए ही होता है। तो मुझे लगता है एक बार इस तरह सभी अभिभावकों को मिलजुल करके कोई रणनीति बनानी चाहिए या मीटिंग्स करनी चाहिए कि जब भारी भरकम बारिशें होती हैं तो स्कूलों में छुट्टियां कुछ इस तरह से दी जाएं कि ना तो बच्चों को परेशानी हो, ना ही बच्चों के माता पिता को परेशानी हो, और प्रशासन को भी बार बार छुट्टियों में फेर बदल उलट पुलट ना करना पड़े। एक दिमाग की बात में जो श्रोताओं आपके साथ साझा की, अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा कहें या बात कहें या समस्या कहें, इसके बारे में विचार विमर्श होना चाहिए, सोचना चाहिए, तो ज़रूर सोचा जा सकता है और अपनी बात को, अपनी आवाज़ को सही जगह तक पहुंचाया जा सकता है। श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और मेरे साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं आप गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ये गीत के बोल हैं बहुत ही प्यारे, और आप लोगों का साथ जब होता है तो हमारा ये सफर 9 से 11 बजे का कब कट जाता है।

हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता इस बात का। और अब पहुंच गए हैं हम बिल्कुल लास्ट के, हमारे 5 मिनट बचे हैं और बातें करूंगी तो कार्यक्रम का समय जो है वो थोड़ा सा और मैं खा लूंगी, इसलिए मैं समय नहीं गंवाना चाहती और सीधा सीधा लिए चलती हूँ आपको कार्यक्रम के अगले और अंतिम गीत की ओर। और आपसे वादा कर रहे हैं श्रोताओं की बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक यूँ ही बने रहिए 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और अब इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का, आज के गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गाँव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है।
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए।

0: देते ये फर्क हुई। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
2: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
3: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
4: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
1: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
3: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
5: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
1: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
6: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
7: और भाई शुक्ला, तेरे टीबी के क्या हाल हैं?
8: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
9: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
8: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
9: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
8: हाँ?
9: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
10: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
10: बात तो सही है।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गेन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हम हमेशा बहुत सारी चीजों के डोनेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अंग हुए, टिश्यू हुए, कॉर्निया, स्किन, लेवर वगैरह, लेकिन हमने कभी बोन्स के बारे में बात नहीं करी। जो हड्डियां होती हैं वो भी डोनेट की जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वो बोन डोनेशन के बारे में हमें सारी जानकारी आज देने वाले हैं कि बोन डोनेशन क्या होता है और ये किन लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, मतलब डोनेट करना भी और जिनको मिलता है वो किस किस केस में इससे फ़ायदा पहुँच सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज स्वागत करते हैं हमारे जो खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रीतिश सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हैं लोकनायक अस्पताल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज आपने चुना है, बोन डोनेशन। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो बड़े सारे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद करेगी।
2: सर, तो शुरू से विस्तार में हमारे श्रोताओं को बताइए कि बोन डोनेशन जो होता है वो किन किन लोगों के लिए फायदेमंद रहता है, मतलब जो हड्डियां दान होती हैं उनसे किन किन लोगों का इलाज किया जा सकता है।
3: जी, आदमी के शरीर की हड्डियां एक उम्र तक बढ़ती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें शरीर की हड्डियां खराब हो जाती हैं, चोटग्रस्त हो जाती हैं या फिर जैसे वो दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं रहती, जैसे कि बोन कैंसर, हड्डी का कैंसर। अब उसमें हड्डी का कैंसर, वो हड्डी खराब हो चुकी है, उसको हमें किसी न किसी तरीके से रिप्लेस करना है। कुछ जैसे बड़े फ्रैक्चर होते हैं, आमतौर पर छोटे फ्रैक्चर होते हैं, हड्डी का लॉस नहीं होता। कुछ बड़े फ्रैक्चर हैं, ओपन फ्रैक्चर हैं, इसमें हड्डियां हैं काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो जाती, खराब हो जाती है, वो शरीर से बाहर निकालनी पड़ती है, नहीं तो अगर शरीर में अंदर रहे तो मवाद होने के चांस है और हड्डी वो जुड़ भी नहीं पाती। तो उस सिचुएशन में भी हमें एक बाहर से जैसे बोन डोनेटेड बोन उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हड्डी जुड़ जाए या फिर वो मरीज जो है वो दोबारा से अपना अपने जीवन दोबारा चालू कर पाए। बोन इन्फेक्शन के कुछ केस होते हैं जिसमें है कहा जाता है कि बोन इन्फेक्शन है वो पूरी ज़िंदगी चलता है, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। बोन इन्फेक्शन की सिचुएशन में वो हड्डी पूरी साफ कर दी जाती है और जो गैप रहता है उसको एक डोनेटेड बोन से पूरा किया जाता है। तो जो बोन कैंसर हैं, बड़े बड़े फ्रैक्चर हैं, बोन इन्फेक्शन है, इन परिस्थितियों में डोनेटेड बोन की बड़ी अहमियत है।
2: तो सर, हमारे श्रोता को ये भी बताइए कि जो डोनेटेड बोन्स रहती हैं उनसे क्या जो मरीजों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक दूसरी पूरी नई बोन लगी है तो वो बिल्कुल साधारण काम कर सकता है, सामान्य तरह से जीवन व्यतीत कर सकता है।
3: जी बिल्कुल, डोनेटेड बोन उस आदमी का जीवन बदल देती है। डोनेटेड बोन एक ग्राफ्ट की तरह काम करता है और शरीर जो है उस डोनेटेड बोन को अपना लेता है, उसको अपने शरीर के साथ शामिल कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन इनकॉर्पोरेशन। तो बाद में धीमे धीमे वो शरीर का हिस्सा हो जाता है। बाकी जो ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी ऑर्गन, किडनी, लीवर है, उसमें काफ़ी सारे जैसे इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, बड़ी सारी दवाइयाँ चलती हैं, वो परिस्थिति बोन डोनेशन में नहीं आती। आदमी की बोन डोनेट करने के बाद किसी भी मरीज को लंबे समय तक दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शरीर का हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह से है वो मरीज की मदद करती है।
2: जैसे बाकी के ऑर्गन्स में देखा जाता है कि अगर किसी को किडनी डोनेट करनी है तो उसके लिए ब्लड ग्रुप का मैच होना जरूरी है या HLA मैच होना जरूरी है, क्या बोन डोनेशन में भी ऐसी मैचिंग होना जरूरी रहता है?
3: नहीं डॉक्टर सौरभ, बोन डोनेशन में ऑर्गन जैसे HLA कंपेटेबिलिटी या फिर ब्लड ग्रुप कंपेटेबिलिटी उसकी जरूरत नहीं होती है। डोनेटेड बोन को कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है टेम्परेचर और बाकी रेडियोथेरेपी के माध्यम से कि वो किसी भी आदमी में वो बोन जा सकती है,
2: उसकी
3: न्यूट्रल हो जाती है, इम्यूनोजेनेसिटी जो है बोन की वो नलीफाई कर दी जाती है। किसी भी बोन जिसमें इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है वो फिर किसी भी मरीज में लगाई जा सकती है, उससे कोई भी मरीज अपना जो जरूरतमंद मरीज है उसका फायदा उसका हो सकता है।
2: सर अब हम बात करते हैं बोन डोनेशन के बारे में, तो कौन व्यक्ति अपनी बोन डोनेट कर सकता है और कब कब ये डोनेट हो सकती है?
3: ये आपने बड़ा एक जरूरी सवाल पूछा, अच्छा सवाल है ये। आमतौर पर बोन डोनेशन दो तरह के लोगों से मिलता है, दो तरह के जो डोनर होते हैं, लाइव डोनर और कैडेवरिक डोनर्स। लाइव डोनर जैसे कि भी कुछ पेशेंट होते हैं जैसे जिनमें जैसे कूल्हे का फ्रैक्चर होता है उम्र वाले पेशेंट जैसे, या कुछ पेशेंट जिनकी जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट कूल्हे का ऑपरेशन जैसे बदलने वाला ऑपरेशन होता है या घुटने का बदलने वाला ऑपरेशन, उसमें छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े हैं मरीज के शरीर से नॉर्मली निकाले जाते हैं, तो वो लाइव डोनर है। उस हड्डी के टुकड़े की मरीज को कोई जरूरत नहीं है, मरीज को उससे कोई फायदा भी नहीं है, और वो पर यह है कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकते, तो मरीज की कंसेंट के साथ उसको बताकर समझा के उसकी अगर कंसेंट होती है तो वो जो टुकड़े हैं जो बोन सेविंग्स हैं वो प्रिजर्व की जाती हैं, बोन बैंकिंग प्रोसेस की जाती हैं, उनकी इम्यूनोजेनेसिटी है खत्म की जाती है और वो किसी जरूरतमंद मरीज को लगा दी जाती है, तो उसकी फायदा होता है। कैडेवरिक डोनेशन में कुछ जैसे पेशेंट हैं जैसे बाकी ऑर्गन से डोनेट होते हैं, कॉर्निया है, किडनी है, लीवर है, तो सेम उसी तरह वो मरीज है या वो रिश्तेदार हैं एक निर्णय ले सकते हैं कि हम अपने मरीज की हड्डियां भी डोनेट करेंगे, तो वो जो दान दी हुई हड्डियां हैं वो भी किसी जरूरतमंद मरीज को कभी ना कभी उसका जीवन में बदलाव लाएंगे।
2: डेथ के कितने समय के अंदर अंदर बोन को डोनेट कर सकते हैं?
3: इसमें सर 24 घंटे के अंदर डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ लिमिट है, इवन वो एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि बोन प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से की जाती है उसकी ऑर्गन जो इम्यूनोजेनेसिटी है वो खत्म की जाती है, तो बाकी जैसे किडनी लीवर कॉर्निया इनके मुकाबले जो टाइम लिमिट है हड्डियों की वो थोड़ी ज्यादा है।
2: एंड जिस तरह से अगर हम कॉर्निया की बात करें या स्किन की बात करें तो वो घर से ही निकाली जा सकती है, घर से ही ली जा सकती है और बॉडी को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बोन के केस में भी क्या ऐसा संभव है या बोन के केस में कुछ अलग से तैयारियों की जरूरत होती है?
3: बोन के केस में सर हाँ हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, डेड बॉडी हॉस्पिटल में हो जैसे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें औजार हैं जो हड्डियाँ निकालने के लिए और जैसे जो सामान वगैरह होता है वो मिल जाता है हॉस्पिटल में, इसलिए पहला सुझाव ये होगा कि भी ऑर्गन बोन डोनेशन है वो अस्पताल की परिस्थितियों में हो तो ज़्यादा अच्छा है। भविष्य में हम अपनी एज ए पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कि हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे भाई किसी के घर में जाके भी हम बोन का जैसे दान ले पाएं
2: जी,
3: तो वो भविष्य के जैसे प्लान है, अभी तो जैसे हॉस्पिटल में कोशिश करें।
2: और अगर हम बात करें कि कौन सी बोन्स निकाली जाती है तो कोई भी बोन निकाल सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक बोन्स हैं जिनका ट्रांसप्लांट संभव हुआ है?
3: बोन डोनेशन मतलब ये नहीं कि पूरे शरीर की सारी हड्डियाँ निकाल दी गई हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परिकल्पना ये बिल्कुल सच्ची नहीं है, जो कुछ कुछ हड्डियाँ ही हैं जैसे जो बड़ी हड्डियाँ हैं मोटी हड्डियाँ हैं उनके कुछ टुकड़े निकाले जाते हैं, और वो जैसे मरीज के रिश्तेदार अगर मान लीजिए भाई कहना चाहते हैं नहीं सिर्फ हमें 5 सेंटीमीटर की हड्डी डोनेट करनी, तो वो भी एक मतलब
2: विकल्प
3: है कि भाई सिर्फ एक 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा है वो हड्डियों का निकाल दिया जाएगा और डोनेट हो जाएगा, बाकी सारी है ना वो एसेस प्रिंट रहेंगे। आमतौर पर जो हड्डियाँ जो चूज की जाती हैं वो है

जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि जिंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने संतराल के बाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रीतेश सिंह जी से, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जो बोन डोनेशन पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोकनायक हॉस्पिटल में दिल्ली में। तो सर, हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस परिस्थिति में बोन डोनेशन संभव है। तो अगर हम बात करें कि आपने जैसा बताया कि बोन 5 सेंटीमीटर की भी निकाली जा सकती है, या फिर जितनी मरीज के परिजन सहमति देते हैं उतनी हम पूरी की पूरी बोन भी निकाल सकते हैं। सो जैसा कि आपने बताया कि बोन डोनेशन सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही संभव है, तो क्या कुछ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है जब तक बोन डोनेशन नहीं हो रहा है तब तक बॉडी के साथ? जैसे कॉर्निया डोनेशन में कहा जाता है कि आंखों को में नमी बरकरार रखनी चाहिए, तो वैसे ही बोन डोनेशन के केस में भी कुछ सावधानियों की जरूरत होती है?
2: जी डॉक्टर सौरभ, आपने बड़ा ठीक सवाल पूछा। बोन डोनेशन के केस में ऐसी कोई स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं। बोन है वो अपनी मसल से स्किन से कवर रहती है, वो एक्सपोज नहीं है
1: जी।
2: तो इसलिए है ना, कोई स्पेशल टेम्परेचर मेंटेन है या कोई स्पेशल सॉल्यूशन है जिसमें जैसे बॉडी को प्रिजर्व करना है या पैर को या शरीर का हिस्सा को डुबो के रखना है? नहीं, इस चीज़ की कोई भी जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर कोई भी मरीज अगर कभी घर से या किसी से फ़ोन आते हैं या कोई डेड बॉडी या कैडवर जैसे को दान देना चाहते हैं, तो उसमें कोई सिर्फ अपनी सहमति दे और वो हो जाएगा काम।
1: ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटे तक बोन डोनेशन संभव है, तो जब जैसे कोई ऑर्गन शरीर में से निकाला जाता है तो उसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है, लेकिन जब बोन शरीर में से निकाली जाएगी तो संभव है कि डिसफिगरमेंट हो, तो क्या ऐसी कोई चीज़?
2: ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मन में बिल्कुल जायज सा सवाल है कि भी मेरी शरीर की अगर कुछ हड्डियाँ निकाल दी, सारी हड्डियाँ बिल्कुल भी नहीं निकाली जाती हैं, सिर्फ जैसे टीबिया, फीमर, थाई बोन और लेग बोन उसकी बात पड़ी है, या उसका सिर्फ कुछ टुकड़ा ही, तो शरीर वैसा का वैसा रहता है, चीरे उसमें छोटे छोटे लगते हैं, टाके लगाए दिए जाते हैं, बॉडी पार्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसको जैसे वो ढीला पड़ जाएगा या फिर डिसफिगरमेंट जैसे जो जैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा शरीर पहले था वैसा ही शरीर रहेगा।
1: अगर जैसे पूरी की पूरी फीमर निकाल दी जाए तो उस जगह पर वो कुछ ठोस नहीं रहेगा, तो फिर
2: उस बॉडी पार्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसको दोबारा से बनाया जाता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल बोन है या फिर कुछ ऐसे चीजें हैं जो उसके बोन के सब्स्टिट्यूट हैं जैसे, वो लगा दिए जाते हैं
1: ताकि वो शेप बना रहे,
2: शेप बना रहता है शरीर की, जैसे बेहद जैसे संजीदगी से उसको मतलब रेस्पेक्टफुली जैसे उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है।
1: सर अगर हम बोन बैंक की बात करें
2: जी,
1: तो भारत में कितने बोन बैंक अभी संचालित हैं और संचालन में हैं, और दिल्ली में अगर हम स्पेशली बात करें तो दिल्ली में कहाँ कहाँ बोन डोनेशन संभव है?
2: बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बोन बैंक आजकल बनने लग रहे हैं, पहले कम थे, अभी धीमे धीमे ऑलमोस्ट जैसे कुछ कुछ जगह हैं। दिल्ली में अभी जैसे 4 जगह हैं, एक एम्स में है, दूसरा स्पाइनल इंजरी सेंटर में है, GTB हॉस्पिटल में, चौथा जैसे हमारे लोकनायक हॉस्पिटल।
1: सर लोकनायक हॉस्पिटल की अगर बात करें तो ये कब से शुरू होने वाला है लोकनायक अस्पताल में बोन बैंक?
2: लोकनायक हॉस्पिटल बोन बैंक सर अभी प्रोसेस में है, अगले 1 या 2 महीने में हम बिल्कुल इसको फुल फ्लैश स्टार्ट कर देंगे। पहले चालू था ये काफ़ी सालों से, करीब करीब हम 8-10 साल से बोन बैंक को चला रहे थे, इसमें जो भी कार्रवाइयाँ होती थी हम करते थे, जो भी हड्डी के कैंसर वाले पेशेंट हैं, सिर्फ जो हड्डी के इन्फेक्शन वाले हैं, बड़ी बड़ी चोट वाले हैं, उनको इससे बड़े फायदे होते थे। बाद में कुछ जैसे मशीनों की कमी के कारण और कुछ चीज़ें हमें उनको रोकना पड़ा, पर अभी दोबारा से इसको हम चालू कर रहे हैं। पहले इस बोन बैंक में ये था कि सिर्फ जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर के पेशेंट थे उनको ही हम ये सेवा दे पाते थे, अभी एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, कोई बाहर का पेशेंट है जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में है या किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पर बोन बैंक नहीं है, तो उसको भी हम ये सुविधा देने की कोशिश करेंगे।
1: अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ब्लड बैंक होता है, जैसे कोई बाहर का आदमी ब्लड बैंक किसी ब्लड बैंक से ब्लड ले पाता है तो वैसे ही है, तो ये नहीं कि सिर्फ भाई अपने अपने लिए है, कोई दूसरे किसी को मदद की जरूरत है तो उसकी भी मदद की जाएगी।
1: बिल्कुल सर, एक बार जो बोन डोनेट कर दी जाती है तो उनको कितने समय तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं?
2: ये सर, एक बोन जो डोनेट हो जाती है सर वो -86 डिग्री टेम्परेचर में प्रिजर्व की जाती है सर, डीप फ्रीजर होते हैं तो काफ़ी जैसे नॉर्मल जो अपने डीप फ्रीजर हैं उनसे मतलब काफ़ी हाई कैपेसिटी का डीप फ्रीजर होते हैं, तो 5 साल तक उस बैंक उस बोन को हमने जैसे संभाल कर रखा डीप फ्रीजर, उस टेम्परेचर मेंटेन 5 साल
1: तक।
2: 5 साल
1: मतलब मैंने सुना था कि कॉर्निया को सिर्फ 360 आवर्स तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बाकी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको तो 4 से 6 घंटे
2: तो वही जो हड्डी की परिस्थिति है वो अलग है। जैसे मैंने बताया हड्डी को डोनेशन टाइम है वो भी ज्यादा है, जो कॉर्निया है शुरुआत के 1-2 घंटे में ही करना होता है, वो हड्डी आप 24 घंटे में भी कर सकते हैं। स्पेशल सॉल्यूशन या इक्विपमेंट है वो हड्डी के लिए जरूरत नहीं है किसी भी, जैसे इट इज हड्डी मजबूत होती है, और जो उसकी यूटिलिटी टाइम है जैसे इस्तेमाल करने का टाइम वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 5 साल।
1: सर जैसे आपने बताया कि जो ज़्यादातर बोन डोनेट होती हैं तो वो ऐसे मरीजों की होती है जिनकी डेथ हो जाती है, और वो ज़्यादातर एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो वो MLC केसेस भी होते हैं। तो जो पुलिस केस होते हैं उनमें कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है बोन डोनेशन में? जैसे वाइटल ऑर्गन्स का डोनेशन होता है तब तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को एक बार कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनको वो बताया जाता है पूरा केस, और अगर वो NOC देते हैं तो उसके बाद अदर रिट्रीवल हो जाते हैं। बोन डोनेशन के केस,
2: बोन डोनेशन के केस में भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होता है सर। अगर MLC केस है, कोई पुलिस वाला केस है जैसे, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसकी NOC और पुलिस की NOC, उसके बाद ही फिर जैसे वो बोन डोनेट होगा।
1: जी सर, हम यहाँ पर एक फिर से छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: जी डॉक्टर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्रीतेश सिंह जी से, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और हम बोन डोनेशन के बारे में इनसे चर्चा कर रहे थे। सर, ब्रेक में जाने से पहले हमने बहुत सारे पहलुओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन मरीजों का जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पहलू होता है, जिस पर वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, कि अगर हमने कुछ पार्ट डोनेट किया, जैसे हमने बोन डोनेट करी, तो वो किन मरीजों को जाएगी। उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जिनके पास पैसे हैं या जो अमीर हैं, उन लोगों को वो बोन दे दी जाएगी, लेकिन जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को ये चीज़ हेल्प नहीं करती। तो ये जो दोनों के बोन से उनका एलोकेशन कैसे होता है, इस बारे में अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें।
2: डोनेटेड बोन्स का एलोकेशन सिर्फ बड़ा ट्रांसपेरेंट है। जैसे आज तक, जैसे पिछले 8-10 साल से हम बोन बैंक चला रहे थे, आज तक किसी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया गया। जिसने डोनेट किया उसको न हमने दिया, और जिसको हमने लगाई उसको न हमने उससे कुछ पैसा लिया। इस पूरे हॉस्पिटल में ये बोन डोनेशन की, जो बोन डोनेशन और बोन किसी को लगाना है, ये पूरी फ्री है। ये बात बिल्कुल, जैसे किसी भी मरीज से न कोई पैसा लिया जाएगा और न कोई पैसा दिया जाएगा। ये बात जैसे आज तक का हमारा ये नियम रहा है, और आगे भी हम इसी को फॉलो करेंगे। वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो भी ऑपरेशन के बाकी जो चीज़ें हैं, वो भी मोटी मोटी फ्री ही रही हैं। ये है तो एलोकेशन है, उसमें कभी फिर सोच में बात आती नहीं है कि भाई गरीब मरीज है, अमीर मरीज है, सारे मरीज एक जैसे हैं। किसी को अगर इलाज के लिए जैसे हड्डी की जरूरत है, तो उसको जैसे बिना निस्वार्थ भाव से दी जाएगी।
1: बट किसका नंबर पहले आएगा, किसको मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि हो सकता है एक ही टाइम पर दो मरीजों को जरूरत हो और एक ही अवेलेबल हो, फिर वो एथिकल आ जाता है कि हम इसको क्यों दे रहे हैं।
2: जी जी, ये बड़ी, जैसे आपने ठीक सवाल पूछा, ऐसी परिस्थिति आज तक कभी आई नहीं है। हमारे पास जैसे भगवान की दया से डोनेटेड बोन्स हैं, काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में रही हैं, और यूजुअली एक साथ ऐसे इतने सारे मरीज इकट्ठे नहीं पाते हैं। एक बार मान लीजिए दो मरीज इकट्ठे हुए, तीन मरीज उठे, तो तीनों के लिए हड्डियाँ रही हैं डिपार्टमेंट में आज तक। अभी ऐसा हुआ नहीं।

0: एक हड्डी है उसके लिए तीन लोग जैसे कम्पीट कर रहे हैं, एवरीवन विल गेट थ्रू।
1: जी, अगर हम बात करें कि ड्यूरेबिलिटी, मतलब जब हम बोन डोनेट करते हैं तो कितने साल तक वो मरीज, जैसे आपने कैंसर की बात करी तो क्या कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है या फिर ये टेम्परेरी रिलीफ होता है, कुछ सालों तक उसका काम तो चल सकता है?
0: जैसे कोई कैंसर का मरीज जिसके लिए हमने हड्डी लगाई है, बोन डोनेटेड बोन है उसका यूज़ किया, तो वो बोन आमतौर पर उस अपनी जो नेचुरल बोन है उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है और वो एक नेचुरल बोन की तरह बिहेव करती है, तो वो पूरी जो मरीज की जितनी भी जिंदगी है वो पूरी जिंदगी उस मरीज का साथ देगी। बिल्कुल, क्योंकि वो इम्यूनोजेनेसिटी वाली बात आती है इसमें कि जिस भी चीज़ में इम्यूनोजेनेसिटी नहीं है माने कि बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, बॉडी उसके खिलाफ जैसे अपने डिफेंस मैकेनिज्म जैसे लॉन्च नहीं करेगी, तो फिर वो मरीज का पूरी जिंदगी साथ देगी।
1: और उसके बाद कोई भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जैसे हम तो दूसरे ऑर्गन में देंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसमें खाने की जरूरत नहीं,
0: कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल। सर अगर हम समाज की बात करें तो हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं अंगदान को लेकर, या फिर कोई भी चीज़ हम शरीर में से दान करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बोन डोनेशन कहाँ पर आप उसको देखते हैं? कभी आपको ये फील हुआ हो कि इन भ्रांतियों की वजह से किसी ने रेस्ट्रिक्ट किया हो, मना किया हो, ज़्यादा डोनेशंस नहीं होते हमारे देश में?
0: जैसे मैंने बताया दो तरह के मरीज होते हैं जो डोनेट करते हैं, लाइव डोनर्स और एक कैडेविक डोनर्स। लाइव डोनर से हमें आज तक कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला, उन्होंने कभी जो सवाल किए उसके सवाल के हमने पूरे जवाब मिले और उस आदमी ने खुशी खुशी अपनी बोन का टुकड़ा हमने जैसे डोनेट किया। मान लीजिए जैसे PHR जैसे कुल्ले का जो बदलाव होता है, कुल्ला बदलते हैं, उसमें हड्डी का जो गोला होता है वो उसको रिप्लेस, उसको किसी भी कारण से जैसे वो गोला खराब हो चुका है इसीलिए वो बदला जा रहा है
1: जी।
0: मरीज के शरीर में वो किसी काम का नहीं है, तो मरीज को बताते हैं भी ये जो हड्डी का टुकड़ा है जो आपके शरीर से निकलेगा वो किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल सकता है, तो ये तो मतलब वो खुद अपने आप में जैसे बहुत बड़ा एक जैसे भला काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा है। तो आज तक जैसे हमें कभी भी इस मामले में कभी दिक्कत नहीं आई। लाइव डोनर उन्होंने हमेशा डोनेट ही किया है, कभी उन्होंने कभी मना नहीं किया। इक्का दुक्का कोई जैसे एक्सेप्शनल केसेस हैं तो वी रेस्पेक्ट देयर डिसीजन उसका जो भी है। उसके अलावा जो कैडावरिक डोनेशंस हैं उसमें जो रिलेटिव्स हैं उनके मन में बड़ी सारी शंकाएँ होती हैं, बड़े सारे जो भ्रांतियाँ होती हैं उसमें, कुछ चीज़ों में जैसे काफ़ी बार जैसे मना पाना आसान होता है, काफ़ी बार नहीं मना पाते हैं, तो मरीज़ के रिलेटिव हैं उनकी जो भी मतलब इट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड, तो वो जैसे सहमति देते हैं उसी हिसाब से बात आगे बढ़ती है।
1: बट अगर आप ऐसे ऐसे लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से दे सकते हैं
0: कि जो हड्डी का डोनेशन है, बोन डोनेशन है, वो एक बड़े पुण्य का काम है। जैसे मरीज के हड्डियां हैं वो जरूर किसी न किसी की दूसरे की ज़िंदगी बदल सकती हैं
1: जी।
0: जैसे कैंसर का मरीज आमतौर पर हम सुनते हैं कैंसर में मरीज मर जाता है, तो एक ज़िंदगी से एक जो ज़िंदगी जाने जा रही है जैसे जाने लग रही है उसको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बड़ा फ्रैक्चर हुआ, पेशेंट जो अपंग हो गया है बिस्तर पर पूरी ज़िंदगी जिसके बिस्तर पर लेटने की बात है, या फिर जैसे पूरी ज़िंदगी भर जैसे अपंग रहने की बात है, तो उसकी अपंगता कम करना है या फिर उसकी जैसे बिस्तर से बाहर निकाल के चलाना है, मरीज चल पाएगा जैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं एक जो आपकी जो दान दी हुई हड्डी है उससे किसी की ज़िंदगी बदल रही है। हड्डी का इन्फेक्शन हुआ है, हड्डी ख़राब हो रखी, मरीज़ बेचारा अपने पैर पर चल नहीं पा रहा है, वज़न नहीं ले पा रहा है, हमेशा वॉक कर या फिर जैसे बैसाखी का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जैसे एक जो आप दान दी हुई हड्डी से किसी दूसरे की ज़िंदगी का बदलाव देख पाएंगे आप। जैसे कॉर्निया में होता है आपकी आँखों से कोई दूसरा देखता है, तो वैसे डोनेटेड बोन से आपकी पैर की आपकी किसी हड्डी के टुकड़े से कोई दूसरा चल जिंदगी जी पाता है, चल पाता है, अपने परिवार का हिस्सा बन पाता है, समाज का हिस्सा बन पाता है, तो ये एक बड़ा पुण्य का काम है और इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए मेरा समझिए
1: जी। मेरे मन में एक डाउट आया अभी कि जो पोलियो की केसेस होते हैं जिनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं पोलियो इन्फेक्शन की वजह से, उनका भी इलाज किया जा सकता है?
0: जी डॉक्टर सौरभ, पोलियो के केसेस में मसल्स वीक होती हैं, हड्डियाँ जैसे रहती हैं नॉर्मल सी रहती हैं, तो ये जैसे अपने आप में दूसरी तरह का कंडीशन है। जैसे हाँ पोलियो के केस में जैसे कोई ऐसी स्थिति आ रही है उसको डोनेटेड बोन की जरूरत है, तो बकायदा उसके लिए सारी डोनेटेड बोन्स अवेलेबल
1: हैं जी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब भी हम ये शोज ऐसे करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास ये क्वेरीज भी आएंगी कि मैं पोलियो के कारण पैर टेढ़ा हो गया था तो क्या इसको भी ठीक किया जा सकता है।
0: हाँ, पोलियो में बेसिकली जैसे मसल पैरालिसिस होता है, मसल्स वीक होती हैं, तो वो अपने आप में जैसे एक दूसरी तरह की परिस्थिति होगी,
1: एक और चीज़ मैं पूछना चाहता था कि कॉस्ट, अगर हम जैसे आपने बात करी कि पीएचआर टोटल हिप रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो सरकारी अस्पताल में अगर हम कभी डेडिकेटेड बोन के थ्रू ऐसे ऑपरेशन करवाएं तो करीब कितना कितना खर्चा आता है? किसी का जैसे हाथ चला गया है तो उन केसेस में
0: इलाज सर पूरा फ्री है सरकारी लोकनायक हॉस्पिटल में, इस तरह का इलाज पूरा फ्री है।
1: सर्जरी भी
0: पूरी फ्री है, सर्जरी, दवाइयाँ, हॉस्पिटल का स्टे, सारी चीज़ें फ्री फ्री।
1: तो दोस्तों ये थे डॉक्टर प्रीतेश सिंह जी, जिन्होंने बोन डोनेशन के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाई। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने बोन डोनेशन के महत्व को इस शो के माध्यम से जाना होगा। एंड ये भी आशा करता हूँ कि अगली बार कभी आपके घर में या आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप बोन डोनेट करने से कभी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि इससे किसी की ज़िंदगी बदली जा सकती है और बहुत बेहतर बनाई जा सकती है। तो आज का हम शो यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर प्रीतेश सिंह का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतना समय दिया, एंड आप लोगों से भी विदा लेना चाहूँगा। अगले शो में हम एक नए टॉपिक पर जल्दी ही बात करेंगे और जल्दी ही आ जाएंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद डॉक्टर सौरभ।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
1: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिल के एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज T3 एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में 0.5% से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है।
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है

0: जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: और भाई शुक्ला, तेरे टीबी के क्या हाल हैं?
3: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
4: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
3: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
4: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
3: हाँ?
4: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
5: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
3: बात तो सही है।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने कंठ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखा। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: हाँ? याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है और चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
17: बात तो सही है।

कानू दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई कार्यक्रम ले करी माटी दी महक का श्रोताओं तो हाँ सारे दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो हाँ सारे ही ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से जरूर करा दे उन्हें न का कामकार करने अपना अपना रेडियो सेट जेड़ा है सभी ऑन करी लिया, क्योंकि तो हाँ सारे जो इंतजार रहता है कि कालू दिया 2 बजे न कने कालू दिया तो हाँ सारे इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न। दर्शकों तो सफर जेड़ा है से तो हाँ तक शुरू हुई या कने इस सफर दा जेड़ा समय तो हाँ तक रहता है से रहता है 2 से 3 बजे तक। तो समय के अनुसार तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम च अहाँ कने जुड़ी सकते कने अहाँ कने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते। तो गलबात भी जरूर करनी है कने इसी कने अहाँ पहले अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करी लेंदे न, फिर जेड़ा बाकी दियां गल्लां न से तुहां तक ले करी आउंदे न। तो जरूर कार्यक्रम दा आगाज अहाँ इस प्यारे दे गीत कने करना है। तो सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा कने इन्ने सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंथी।

ए है तू हाँ सारियाँ दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक तशो तो सफर च सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत शुरुआत अहां जरूर इस कार्यक्रम की करी थी है इस गीत कन्ने कन्ने आज अहां जिड़ा कार्यक्रम च गलबात करनी है सभी जरूर तुहां तक पहुंचानी है दर्शो तो गलबात अहां दी जिड़ा आज कार्यक्रम च रहनी है से रहनी है कि सोशल मीडिया दी जिड़ा लत है से कुथी ना कुथी अहां दा जिड़ा मानसिक सेहत है कन्ने जेड़ा अहां दे रिश्ते न तिना पर प्रभाव जेड़े से कुथी ना कुथी ये सोशल मीडिया जेड़े से पा दे तशो तो इदे उपर अहां कार्यक्रम च गलबात करनी है कन्ने तुहां सारे भी इसा गल ते कितने की सहमत हन कि क्या सोशल मीडिया दे कारण जेड़ा रिश्तियां च प्यार भावना बिल्कुल खत्म है या अपनापन जड़े से बिल्कुल ख़त्म है या समय जड़े से अहाँ अपने जो कुथी ना कुथी नहीं दे पा दे से क्या कारण है सोशल मीडिया दिया वजह ने अहाँ अपने जो समय नहीं दे पा दे या कोई और कारण है ज़रूर तो हाँ इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ सकते कने अहाँ करने अपनी जड़ा गल बात है से ज़रूर साझा करी सकते दशो तो अजकने दिने दी अहां गल करिए ता अजकना जेड़ा दिन है 9 जुलाई 2026 दा ता जरूर तुह सारे इस दिन जो इंजॉय करा दे होने न कने इस कार्यक्रम दे सफर जो भी जरूर इंजॉय जेड़ा है से करा दे होने न दशो तो अहां मानसिक सेहत दी गल कीती कि जेड़ा सोशल मीडिया है ज़्यादातर अजकने दौर दी अगर अहां गल करिए ता हर कोई सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बिजी है कि अहां अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते न जिन्ना मैं बोलिया था कि अपने जो समय जड़े से अहां नहीं दे पाते न कारण तो सोशल मीडिया ही है फिर भी अहां समय जो जड़े से कोसते रहते कि नहीं समय दे अनुसार अगर तुह चलते न कने समय चो ना कोसी करी तुह अपने जो समय दिंदे न या अपनी सेहत जो समय दिंदे न तो जरूर तो अपनी सेहत जो हमेशा फिटनेस रखी पाते न फिट रखी पाते न तो कुथी ना कुथी अहाँ अपनी गलती जो ना मनी करी अहाँ समय जो जड़े से दोष देना शुरू हो जाते न कई बार अहाँ अपनी किस्मत जो भी दोष देना जड़े से शुरू हो जाते न कि अहाँ दी जड़ा किस्मत है सही खराब है पर अगर अहाँ हर काम समय के अनुसार करते न या समय के अनुसार चलते न तो सारे काम समय के अनुसार अहाँ करी पाते न जिन्हें कि अगर तुह इस कार्यक्रम च समय के अनुसार जुड़ी आते न ताई तुह अपना जड़ा अपनी पसंद का गीत है से इस कार्यक्रम च तुह सारे ही सुनी सकते क्योंकि तुह सारे जो पता है कि यह कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कने जितने भी फेसबुक लाइव कने जुड़े न तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है क्योंकि शुरुआत इन्हां दो लफ्जा कने होना जरूरी होंगी क्योंकि यही अहां दे जेड़ा संस्कार हैं यही अहां दा जेड़ा व्यवहार है सब कुछ अहां जो दसींदा तो श्रोताओ इसी कने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो भी अगे बढ़ाना है कने तुहां सारे जो भी अगली फरमाइश की ओर ले करी चलना है तो तुह सारे भी जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर च अपनी अपनी जेड़ा फरमाइशां न से जरूर करी सकते इंतज़ार दी जेड़ा घड़ी है से बिल्कुल ख़त्म है तुह वास्ते कने जेड़ा गीत

0: दशतों तो सारे सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कहने ता इसी कहने तो सारे सुनिया ये प्यारा दे गीत प्यारी दे फरमाइश कने तो सारे भी इंजॉय की होनी है कने गल हाँ करिए जिंदगी दी। जिंदगी जड़े से हर कुसी दी अपनी अपनी है। जिंदगी जड़े से हर कुसी दी अलग अलग है। हर कुसी ल जड़े से सब कुछ नहीं है, कुसी ल है भी कुसी नहीं भी है। कने कोई जड़ा न तिना जो बिना मंगियो सब कुछ जड़े से मिली आंदा है। पर अगर हाँ कोई भी काम कर देन या जिंदगी का जिहड़ा सफ़र है, जिंदगी के सफ़र च बड़े ज़्यादा उतार चढ़ाव जिहड़े से चले रहिंदे, क्योंकि अगर जिंदगी का सफ़र खास तौर पर अहां बोलिए कि बचपन की गल करिए, तो बचपन जिहड़े से सबसे बेस्ट है। न किसी चीज़ की टेंशन है, न किसी चीज़ का तनाव है, क्योंकि फ्री माइंड है ना, अपना जिहड़ा मौज मस्ती है से अहां करी सकते। बचपन दियां जिहड़ा यादां न तिना जो ज़रूर याद करी करी अहां अपने हर पल जो जी सकते। कने जिंदगी दा जिहड़ा सफ़र है, कदी खुशी है कदी गम है, ये तो जिंदगी दा दौर जिहड़ा से चले रहिंदा। कदी हार है कदी जीत है, ये तो हर इंसान कन्ने, हर इंसान दे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होंदी। पर अगर हाँ तिना कमियां जो गिरना शुरू हो जाते न या तिना कमियां जो दिखते न, तो हाँ अपनी जिंदगी च हमेशा अग्गे जिहड़े से नहीं बढ़ी पाते न। तो अग्गे बढ़ने वास्ते क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, क्योंकि अच्छा सोचते न ता ही अहां अग्गे बढ़ी पाते न। कई बार अहां ये भी सोचते न कि अगला जिहड़ा व्यक्ति है उसी कन्ने अहां खुद जो तुलना करना जिहड़े से शुरू करेंगे। खुद पर विश्वास रखा, खुद पर खुद की जिहड़ा अहमियत है से जरूर समझा। तो अहां दे जिहड़ा पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हो न, कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: ठीक ठाक बढ़िया जी। और तुसा सुना, तुहा ठीक ठाक है ना?
0: जी यहां भी ठीक ठाक है जी। तुह कुत्थों ते बोला दे, कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मैं कन्यारे से बोलेगी, रीना
0: जी। रीना जी क्या कामकार तुहा

0: गया क्या करा दे।
1: बैठे उल्टा टिट्टी है कहे मुझे कहने तो आ रही है रेडियो सुना
0: जी अच्छा रेडियो सुना दे।
1: दे। हाँ
0: जी तरीना जी आज जहाँ जिड़ा गल बात करा देन तो जरूर सुनी ली होनी है अगर रेडियो सेट 2 बजे तो ऑन कित्या होगा या पहले ते।
1: नहीं, मैं बस ये कितना ये गेना जी होनी हुई थी कितना घंटा आती थी यानी कोई बात चला सा गई मैं पास गए।
0: जी तो आ जहाँ जिड़ा गल करा देन से करा देन कि सोशल मीडिया दी जिड़ा लत है से कुछ ना कुछ
1: अच्छा
0: अहंदा जिड़ा मानसिक सेहत है तिहा पर भी असर पो दे कने अहंदे जिड़ा रिश्ते न तिना पर भी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया जिड़ा से प्रभावित करा दे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो तुम्हें क्या लगता कितना की तुहा यह गलते सहमत हन।
1: शशि जी नहीं ज्यादा नहीं दिखना चाहिए आजकल दिन
0: जी
1: रात जालू वेले बैठे हो ना
0: जी
1: चौबीस घंटे फोन है बस आते और कोई काम भी नहीं है ना
0: जी
1: जरा के बैठे फोन दे दिया जरा रात सोना था फोन जरा
0: जी
1: के बैठे फोन ये ठीक नहीं है ना इसका
0: जी
1: इसका अखा से भी बड़ा ज्यादा असर बहुत है।
0: जी जी
1: मेरा तो ये है मैं तो रात सोए भी जाने लगे अच्छे फोन होता ये लगे कि नींद पे यार करे तभी फोन ये लगे कि छुट्टियां थी ना जी बिचकना बंदा फिर
0: जी
1: चुपका जब फोन दिखा लेंगे बड़ी मतलब तो बड़ी बुरी लात है इधर
0: जी
1: इसे दिखना नहीं चाहिए ज्यादा पर करना क्या
0: जी ता थोड़ा त्या तो जो भी स्तर कोने दी जरूरत है
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी क्योंकि अगर हाँ खुद ही फोन दिख देना तो बच्चे भी सही जेड़ा पेरेंट्स करा देना सही शुरू
1: वो बच्चे
0: करना
1: भी हैं
0: या
1: हाँ जी
0: जी क्योंकि पेरेंट्स से
1: हाँ
0: बच्चा
1: जी
0: सीखता है ना जी कने पेरेंट्स ही
1: हाँ
0: अपने
1: जी
0: बच्चे जो हर चीज़ सिखाते हैं ना जी।
1: हाँ जी हाँ पेरेंट्स भी बच्चे करें आपको कोई ये करना काम बच्चा नहीं करता झट फोन ना पकड़ा दे रहे बैठ बच्चा
0: जी
1: फिर डोल बैठी है ये चुप करके ये
0: जी जी
1: खाना
0: कने
1: खाना खाना नहीं बच्चा खा रहा था आपके फोन पकड़ा ही दे रहे
0: जी तो सही है ना कि
1: फोन ना
0: मजबूर मजबूरी पर तो हाँ
1: हाँ जी हाँ
0: बच्चे
1: जी
0: जो ऐसे तरीके ने बोला कि से मोबाइल फोन ले ही ना पा कि है
1: हाँ जी
0: खाना
1: हाँ जी हाँ
0: प्रॉपर तरीके ने खाई पा ना जी।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: फिर रिश्तिया दी यहाँ गाल की तो रिश्ते भी कुछ ना कुछ ही प्यार भावना बिल्कुल खत्म है हर कुछ ही हर दिन हाँ कोई ना कोई न्यूज़ जिड़े ऐसे सुन दे ना कोई ना
1: जी हाँ
0: कोई
1: जी हाँ जी हाँ
0: चाहे से
1: जी
0: घरे दी है चाहे से बाहर दी है हर दिन कुछ ना कुछ सुन दे रहन दे ना जी।
1: हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: थोड़ा
1: जी
0: दिया सुनी करी अजीब भी लगदा बुरा भी लगदा दुख भी होंदा कि नहीं
1: हाँ जी हाँ
0: अपनापन तो
1: जी
0: बिल्कुल ही खत्म है ना जी
1: हाँ जी इन्हीं
0: जिड़ा
1: फोन ने तो बड़ी दुनिया
0: जी
1: बगाड़ी छी इसी
0: जी चलो इस कुछ
1: चलने फोन ठीक भी है ना चल
0: जी
1: पहले नहीं कुछ चीज पता लग रहा था आजकल चल जाट बंदे जानते तो कुछ ना टाइम नहीं है चल फोन ना
0: जी
1: पर ये
0: चलो
1: जेड़ा जे
0: तिहा
1: हाँ
0: चीज वास्ते सही है चाहे
1: जी
0: इंटरनेट
1: हाँ
0: दी
1: जी
0: गल करिए चाहे ऑडियो कॉल वीडियो कॉल कई
1: हाँ
0: बार
1: जी हाँ
0: पहले
1: जी
0: होता था कि कनेक्ट नहीं हो पाते थे तो चिट्ठियां
1: हाँ
0: जड़े
1: कई
0: से
1: कई
0: भी
1: दिन हाँ
0: जी
1: जी जे
0: पर उन
1: नहीं जाए पा तो चल बंदा आमने
0: जी
1: सामने चल वीडियो कॉल चल के
0: जी
1: दिखी के गल बता हाँ ठीक
0: जी
1: है आपको पीछे चल कितना
0: दीदी वास्ते तो
1: करिए पीछे
0: ठीक है
1: हाँ
0: पर गलत यूज वास्ते अगर अहाँ करा देना तो कुछ ना कुछ यहाँ खुद जो ही नुकसान पहुंचा देना जी
1: जी
0: जेड़ा हाँ सोशल मीडिया पर दिखा दे सही यहाँ करी चुका दे
1: हाँ जी हाँ जी ये बच्चे ना खास कर दी करा दीजिएगा दिखा दे कई बच्चे सो के हाथ से बैठे ना हाँ
0: जी जी
1: जी हाँ
0: जी तरीना जी आज तुम्हें कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: सुनना है गाना चल पहाड़ी गाना चल ना ये बोर्ड थले धूना लगाया पोना आ गया गोनी
0: जी कुंडिया
1: झंडिया दे गहरे
0: जी
1: रौनक लगाइया कि पोना आ रहे झंडिया दे ओले ओले आए जायो
0: जी जी जरूर ये भजन तो तक पहुंचा देने चाहिए जुड़ने
1: पूजा
0: वास्ते
1: हिमाचली का गाना पूजा हिमाचली का
0: जी अच्छा पूजा हिमाचली का गाना है
1: हाँ जी
0: जी जी जरूर ये फरमाइश तो तक पहुंचा देने चाहिए जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: धन्यवाद जी थोड़ा जी
0: जी। ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शो तो तुहां सारे जो फरमाइश दी ओर लेकर चल देना सुन देने सब प्यारी दिया फरमाइश है जो तुहां सारी भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। गूंज अपने पर दी।

0: तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने फिर इतने हाँ वापिस आई हो ना अपनी गलबात ऊपर कने गलबात बड़ी प्यारी है कने ये गीत ये भजन तो हाँ सारे सुनिया रीना जी की फरमाइश कने से रहने वाले ने खनियारा ते तिना तक हाँ ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारे भी इंजॉय किया इस कार्यक्रम दे सफर जो भी जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न तो इसी सफर जो अगे बढ़ा दे न कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात तो जरूर तिना कने हाँ गल बात करनी है कने तिना ते पूछना है कि सह कुछ ते बोला दे न कने तिना दा ना क्या है। हेलो
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दी कने तुहांदा ना क्या है जी?
1: जी मैं चरण लाल बोला था, नरवाणे दे।
0: जी नरवाणे ते बोला दे जी, क्या हाल चाल है जी नरवाणे वालियां दे?
1: बढ़िया बढ़िया मैडम जी, बढ़िया, ठीक है ना
0: जी? क्या काम कार छेड़िया तुहां जी, क्या करा दी?
1: बस कम होना था, उरा लगाई के बिल्ले हुए ना
0: जी ता नरवाने वाले होइए बेले उरा लगाई करी
1: जी, हुन ये बिल्ले सारे लगभग कने काए पट्ठे लगे डंगरे करना।
0: जी कुथी कुथी ता पानी भी नहीं है ना जी?
1: हां जी, पानी तो दिखा जे कुल्ला कुल्ला खत्म हो गया
0: जी।
1: लोका खेती करनी नहीं छड़ी थी, कने जेड़े कर दे बेचारे सब नाल नु पानी इकट्ठा री काम चला दे।
0: जी जी कने कई कई जगह ता पानी दी बड़ी भरी मुश्किल है ना जी, बड़ी ज्यादा।
1: जी बड़ी ज्यादा मुश्किल है सही कह रहा है, क्योंकि मौसम भी एक तो कहना नदी नाले च भी पानी घटी घटी होना।
0: जी जी बिल्कुल ही पानी बड़ा ही कम है पानी।
1: जी जी
0: जी
1: पानी भी कम ही होना, पूरी एरिया मारे से बिकी हो सारा इलाके च बिल्डिंग बना दी तो पानी कुछ होना।
0: जी जी जी पर जेड़ा किसान है तिना वास्ते तो थोड़ा बड़ा ये खराब टाइम है ना जी,
1: हाँ जी गल
0: क्योंकि
1: तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो किसान आदमी इस वक्त पानी की बड़ी जरूरत है
0: जी बड़ी ज्यादा। हूँ बारिश पता नहीं कल होनी कल नहीं होनी कने
1: सही।
0: जी
1: बरखा का मौसम जो है बनता भी है,
0: जी
1: हो जाती भी नहीं होती, फिर नियंत्रण पानी कुल्ला चढ़ा किसी ने कहा कि खेतों में पानी चढ़ना थोड़ा थोड़ा
0: जी जी चलिया रहा
1: जो
0: ना
1: कुल्ला
0: जी।
1: जी पानी नहीं होना तो खेतों में पानी कुत्ते होना।
0: जी अहां कुल्ला बनाने चढ़ी थी हूं तो थोड़ी देर मेहनत भी नहीं करते ना अहां
1: बिल्कुल खत्म हो गई भी
0: है नी नी कुल्ला कुथी
1: ना,
0: कुथी
1: क्योंकि
0: साफ सफाई जी
1: कोहली होंगे तो पहले जवाबदारी थमते थे, एक बार मतलब आवाज मारते ग्रामीण लोग जाते थे।
0: जी जी
1: चलो लोगों के मोहल्ले से फुर्सत नहीं है तो जाना कुछ वो
0: जी तो आज हाँ कार्यक्रम च यही गल बात लगाई हुई थी कि जेड़ा सोशल मीडिया दी लत है से कुछ ना कुछ अहाँ लसमय भी नहीं है, रिश्तियां दी अहमियत भी नहीं है, कने अपनी सेहत का भी जेड़ा ध्यान है सब यहाँ कुछ ना कुछ नहीं रखा दे ना जी।
1: देखो मैडम जी सोशल मीडिया से
0: जी
1: हाँ पूरे बर्बाद हो चुकी हो,
0: जी
1: जितने भी घर अगर पांच मेंबर
0: जी
1: ता पांच स्मार्टफोन आने पांच रिचार्ज हो दे
0: जी
1: उदे अलावा हाँ दिन घर हो दे अपने फोन चला के कुछ ना कोई
0: जी
1: मतलब नहीं है।
0: जी जी
1: हाँ बस ये रील स्क्रोल करा दे यूट्यूब च ये फालतू चीजें देखी जा दे कने अपने आप मतलब टाइम पास कर जा दे।
0: जी जी
1: मैं तो ये बोल रहा कि हर घर एक रेडियो होना चाहिए ताकि घर तो हाँ अपना नेट ऑफ करी करी घर अपना मैं रेडियो सुना।
0: जी जी
1: रेडियो कैसा माध्यम है कि जानकारी भी है तो हाँ जो
0: जी
1: समाचार भी है ना मनोरंजन भी है सारे सुधन ते
0: जी
1: कर तो हाँ दिमाग जी ऐसा है बिल्कुल फ्री रहता अखियां फ्री रहनी तो हाँ तो दुनिया तो कुदरत नजारा दिखी सर भी दुनिया क्या होता।
0: जी जी
1: जी हम सोशल मीडिया यूज करते तो हमारा माइंड हैंग होता।
0: जी जी
1: ये जे ब्लू लाइट जी स्क्रीन लाइट हमारी आखी जाती हमारे दिमाग हैंग करी दी हाँ बस एक खोज करा दे
0: जी
1: कने हमारी सहन शक्ति खत्म हो जा रही।
0: जी जी
1: सब कुछ जल्दी जल्दी मिली है
0: जी
1: ना?
0: पानी दी चाहत है कि सब कुछ बैठे बिठाए मिलिया ना जी।
1: जो सोशल मीडिया च दसा दे सा एक्चुअली हकीकत नहीं है सर, दिखावटी दुनिया है एक
0: जी, आजकल
1: सर,
0: ए
1: इसी
0: जी
1: तीदा ना ही रील है
0: जी
1: सर, रियल नहीं है
0: जी
1: जी।
0: जी
1: तो
0: जी ना
1: उन जितने भी नए बच्चे हैं ना या परिवार से,
0: जी
1: उन तो पहले कॉल वाले गला दे कि बच्चे अजकल खाना जड़ी अंश है, मतलब यूट्यूब दिखी करिए तो बच्चे खाना खा देना।
0: जी जी जी
1: एक गलती बच्चे की नहीं है, एक
0: पेरेंट्स
1: गलती हाँ
0: की
1: देखो पेरेंट्स की गलती है कि हाँ घर है कि खुद हाँ फोन लगे हो।
0: जी
1: सबसे पहले अपना घर है करिए फोन का डाटा ऑफ कर दिया तो हाँ
0: जी
1: बिल्कुल, हाँ जी ऐसी कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है कि हाँ ऑनलाइन काम करना है,
0: जी जी
1: ये कुछ सीखे दे कर रहे मैं कदे होंगे अपना साइड कमरे भी कर सकता, बाकी
0: जी
1: ये ज्यादा से कुछ सीखने लोड़ नहीं, कुछ भी नहीं है जी।
0: जी जी इतनी तो ज्यादा नहीं है ना जी
1: जी पर हाँ क्या है कि रेडियो सुनना नहीं चाहते
0: जी
1: हाँ लोग, सोशल मीडिया च हाँ एक्टिव रह दे, हाँ दिखा देगा ना कमेंट करा दे बदे बदे या कुछ भी ना मतलब दे, वहां
0: जी
1: जानते नहीं पहचानते नहीं जो दिखी जा दे, तो
0: जी
1: कुछ सच है कुछ झूठ है कुछ एआई जनरेटेड
0: जी ए आई नहीं
1: है ना
0: सब
1: जी।
0: कुछ

0: एआई तो इज बड़ा ही चल रहा है ना जी।
1: बिल्कुल, मतलब ये है कि सोशल मीडिया से बचने का एक सिंपल और सरल उपाय है कि तो अपने घर एक रेडियो रखो, तो
0: जी
1: जल्दी अपने घर होंगे तो अपने डाटा ऑफ कर दिए, तो हमारे बैटरी सेफ रहनी, डाटा सेफ रहना, तो
0: जी
1: हमें यार कोई बड़ी एमरजेंसी पैसा भेजना होगा या कोई बड़ी एमरजेंसी को काम करना होगा तो कर सकते हैं।
0: जी
1: उन देखा जो 2016 च जियो आया था बिल्कुल फ्री आया था,
0: जी फ्री आया था
1: उन उन लोगों ने लत लगाने पर एक मार्केट की दो कंपनियां जियो का
0: जी
1: एयरटेल रही है,
0: जी जी
1: इतना महंगे रिचार्ज जहाँ करा थे, चाहे मिला के करता इतने दोस्तों 250 रिचार्ज पाई गया, क्या हासिल
0: जी
1: हुआ था
0: कुछ भी नहीं,
1: है ना
0: समय दी
1: पूरा।
0: बर्बादी है कि ना अपना माइंड कुछ ही। अगर हाँ जेड़े सोशल मीडिया च दिखा दे सही, यहाँ रियल जिंदगी च करना शुरू हो याद है ना जी।
1: हाँ लेकिन सोशल मीडिया से सच्चाई नहीं है,
0: जी
1: नहीं जी सेक रियल है, रियल है सर, रियल नहीं है, जिससे
0: जी
1: बहुत कुछ चीजें सच नहीं है
0: जी
1: यहाँ ना, एक दिखावटा काम दिखावी दुनिया चाहे जिया दे दे कुछ
0: जी
1: भी नहीं है।
0: जी जी पर दिखावट कई करा दे अहाँ, कुछ वास्ते करा दे अहाँ, जो ये भी पता है कि जिंदगी अहाँ दी है, अहाँ किस हिसाब ने चलना है ना जी।
1: मैडम जी जिंदगी आ दी है
0: जी
1: चलना है थी साहब ने, लेकिन अहाँ एक मतलब
0: जी
1: सोसाइटी की दुबई दिखी के चला दे
0: जी जी सही तो
1: अपने साहब
0: सबसे
1: ने कौन चलना था।
0: सही तो सबसे गलत है ना जी।
1: हाँ जी और तो देखा जी लोग
0: जी
1: अपने घर के किचन गार्डन में बागवानी करना नहीं चाहते,
0: जी
1: खुशी हो तो हाँ, अगर जो कोई अनहोनी हो जाए तो खुशी फोन करने टाइम नहीं है।
0: जी नहीं है
1: अगर पड़ोस से पहले कोई पड़ोस से डेथ होती था कोई बंदा मतलब वादे गंदा, आजकल तो वो गंदा ही नहीं
0: जी, उन तो बिल्कुल ही खत्म, ऐसे चीज बिल्कुल ही खत्म
1: प्यार
0: है ना जी।
1: भावना जी मारिया खत्म हुई है, कुछ ने कोई प्यार
0: जी
1: मोहब्बत ली आए
0: जी
1: अपनी स्कूटी वो दे अपने घर बढ़िया दे अपने फोन
0: जी
1: बेहिया दे, मतलब करे नहीं पता लगा क्या होता,
0: जी घरे तो ही
1: पड़ोसी
0: कोई ये नहीं है ना जी।
1: ने तो छड़ी छड़ पड़ोसी ने छड़ी दिया,
0: जी जी
1: पहले बच्चे होंगे तो मतलब पहले तो आजकल तो चिल्ड्रन पार्क बना दे ग्रां च बना दे, पहले पार्क नहीं पहले आई लोग हाँ बलना बलना खेल दे जाए करी
0: जी
1: ना मगरे का बैट दे बनाना कने बॉल कने दिन भर तो अल्लाह कने खेलते रहना,
0: जी जी
1: आज पूरे बच्चे आए फोन चले गए हो,
0: जी
1: आजकल
0: ता
1: कोई पेरेंट्स ही बच्चे बच्चे ने टच अपने होना ज्यादा
0: जी
1: यहाँ खुद
0: जी
1: जिम्मेदार आने चीजें यहाँ खुद ही हाँ, तो बचपन अच्छा जी कर आई हो हाँ, तो बचपन सही निकले हाँ,
0: जी
1: सोसाइटी से खेल लियो बड़े हो या सब कुछ हाँ हार्ड वर्क भी जीत्या,
0: जी जी
1: पर गाँव हमारे बच्चे से बिल्कुल मोबाइल का टचअप हुई हो
0: जी
1: तेरा ना,
0: जी
1: कोई बच्चे ने मिला तो खेल लेना से तेरा कुछ मिल रहा था ना तेना वहाँ खेला दे हाँ ही फोन ना चला गया फोन ना चला गया सब मोबाइल चंगेज हैं।
0: जी जी ता आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना चाहेंगे जी।
1: गीत भी हमने जिंदगी बड़ी सोहनी है तो गीत भी जिंदगी भी गीता रही है
0: जी जिंदगी भी गीता जी है जरूर, तोहंदी फरमाइश तोह तक पहुँचा दें जी। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहाँ, बड़े अच्छे जेड़ा विचार है न, जितने भी श्रोता सुना दे होने न तिना जरूर ध्यान ने सुने होने न जी।
1: जी।
0: जी धन्यवाद जी तोहंदा
1: धन्यवाद जी,
0: जी,
1: धन्यवाद
0: तशो तो तुह सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, ता इसी सफर जो हाँ आगे बढ़ाते न करें तो हाँ जो लेकर चलते न अगली फरमाइश दी और तुह तक पहुँचा दे न इस प्यारे दे गीत जो तुह सारे भी इंजॉय करा।

0: ये दोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला अगली श्रोता हाँ कन्ने जुड़ चुके हैं कर दिन तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: धन्यवाद मैडम जी। ठीक ठाक मैडम जी। ऐसा तो ठीक ठाक मैडम जी।
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुह कुछ ते बोला दे कने तुहांदा ना क्या है जी?
1: सुनील कुमार बोले मैडम जी कोठिया जरूर ते।
0: जी तो सुनील जी क्या काम कार तुहां लगाया या क्या करा दे?
1: कुछ नहीं मैडम जी रेडियो सुना दे तुहांदे प्रोग्राम।
0: जी रेडियो सुना दे ता आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे न से करा दे न कि सोशल मीडिया दी जेड़ा लत है से कुछ ना कुछ ही आहदे जेड़ा रिश्ते न या आहदी जेड़ा सेहत है मानसिक स्वास्थ्य है तिस जो भी कुछ ना कुछ प्रभावित जेड़े से करा दे सोशल मीडिया ता तो हैं क्या लगदा
1: मैडम जी? मोबाइल जलाते हैं बड़ी बुरी है मैडम जी।
0: जी
1: जी चलो इसकी तरफ ठीक भी आएगा ना गलत यूज करना था बुरा भी है।
0: जी
1: हां जी मैडम जी आना खरा दे जन पहले होता है मैडम चिट्ठियां जमाना।
0: जी जी
1: हां जी तो हुन तो मैडम जी तू विदेश जाएगी कि बैंक से फोन नहीं गल हो जा दी।
0: जी
1: मैसेज भेजना वीडियो कॉल करने तो में हो जा दी गल मैडम जी।
0: जी जी
1: हां जी
0: पर उस पुराने समय दी बेशक हां मतलब ज़्यादा जागरूक नहीं थे या ज़्यादा हल फैसिलिटी नहीं थी पर इस दौर च अपनापन जड़ा ऐसे महसूस होता था ना जी।
1: हाँ जी बिल्कुल सादा जीवन था ना मैडम जी तालू का पर ठीक थे मैडम जी तालू ना जमाना और जितना फास्ट जमाना उतना है मैडम जी।
0: जी जी उतना ही फास्ट हर काम
1: जी। हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो सुनील जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: जो गाना सुनाई दे मैडम जी करनैल राणा की आवाज है भजन है एक बाबा बालकनाथ जी का मन्नी ओ चले मनाई वो चले।
0: जी मन्नी ओ चले
1: मनाई वो चले बाबे दिया सुपना वो चढ़ाई वो चले।
0: जी जरूर है भजन तो हाँ तक पहुंचा दें जी।
1: धन्यवाद मैडम
0: जी तो हाँ दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद मैडम जी। नमस्ते जी।
0: जी ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते तशु तो आज हाँ जिड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से करा देन कि सोशल मीडिया दी जेड़ा लत है से कुछ ना कुछ ही अहां दा जेड़ा मानसिक स्वास्थ्य है या अहां दे जेड़ा रिश्ते न तिना जो प्रभावित जेड़े से जरूर करा दे कने तो सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकदे कने अहां कन्ने गल बात जेड़े से जरूर करी सकदे तो गल बात अहां तुहां तक के पहुंचा दे हन कि मानसिक जेड़ा मानसिक सेहत है तिहा पर क्या असर जेड़ा से सोशल मीडिया दा पौंदा है तुलना दी भावना हाँ जेड़ा से अपनी तुलना दुए जेड़ा अगला व्यक्ति है उस कन्ना करना शुरू हो जांदे न नींद दी कमी अकेलापन नींद दी कमी हुण तो सोचा दे होणे नींद दी कमी किन्ना हुंदी रात भर मोबाइल फोन या जेड़ा सोशल मीडिया है या इंस्टा है या फेसबुक है अहाँ जेड़ा एक रील ये करते न दिखते न फिर बाकी रीला भी दिखना शुरू हो जाते न इसी कन्ने अकेलापन अहाँ हज़ारों जेड़ा कोई भी ऐसे अकेले रहना पसंद करते हैं या हाँ ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते न कने अपना ही तिस मोबाइल फ़ोन जो दिखा देन या इंस्टा चला देन या फेसबुक चला देन या कोई भी ऐप जड़े से यहाँ चला देन बस तिस ही अपना अकेलापन हाँ ढूंढा देन कने इसी कने हाँ अपने जो समय जड़े से नहीं दे पा देन कने रिश्तों च असर खामोश कमरे यानी कि हर कोई अपने अपने कमरे अपने अपना काम करा दा कुसी जो कुसी ने मतलब नहीं है हर कोई अपने मोबाइल फोन च बिजी है। संवाद दी कमी, यानी कि यहाँ कुसी ने गलबात नहीं करते न, कने अपने ची बिजी रहते न, अपने च बिजी कुछ रहते मोबाइल फोन च, इसी कारण यहाँ अपने ने गलबात जेड़े से नहीं करी पांदे न, कने सही संवाद दी जेड़ा कमी है से दिखने जो मिलदियां न। इसी कन्ने गलत फहमियाँ कई बार हाँ सोशल मीडिया दी वजह ने, पोस्ट लाइक दी वजह ने जड़े से रिश्तों च शक कने दूरियां जड़ा न पैदा शुरू होना जड़े से शुरू हो जाए न। समय दी चोरी, परिवार जड़े से अपने बच्चों जो समय नहीं दिंदा है, कने बच्चे जड़ा न से अपनी फैमिली जो समय नहीं दिंदे न, तो समय दी बच्चों जो ही लगता है कि समय दी कमी है, पर अपनी गलती जड़े से बच्चे नहीं पहचानी पाते न कि यहाँ दी गलती है, कि यहाँ अपना समय जड़े से कुथू लगा देना। दर्शो तो अपनी गलबात जो इतनी रोक देना, कने तो जो लेकर चल देना अगली फरमाइश दी ओर।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंचन धर्मशाला तो हाँ सारे सुनिया ही प्यारा दिया भजन। इस भजन दी फरमाइश सुनील जी दिया युग ने से रहने वाले न कोठिया जलोट ते तीन तक कहा ये भजन पहुँचाया कने इसी कने तो हाँ सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति क्योंकि कार्यक्रम दा जेड़ा समय है सियाह जो उन बोला था कि तो हाँ अनुमति जड़े से ले लिया तो समय के अनुसार हाँ अनुमति भी लैनी है कने तो हाँ हर चीज़ का ध्यान जरूर रखना है थोड़ा ध्यान।

सोशल मीडिया जो साइड रखा, मोबाइल फोन जो साइड रखा, कने जल्दी जल्दी अपने जो समय देना शुरू होइया, अपने कने प्यार भावना जिड़े से रखना शुरू होइया। यही जिंदगी दा असली सफर है, यही जिंदगी दी असली जिड़ा हम बोली सकते कि सुकून है। जलो अह जो फैमिली कने प्यार भावना एक दुए जो मिली आती है, तो कुछ ना कुछ अह अपनी जिंदगी दे सफर जो इंजॉय करना शुरू होई जांदे न। तो इसी कन्ने तो हाँ इस कार्यक्रम दा जेड़ा लास्ट गीत, लास्ट फरमाइश है, वह जो इंजॉय करा कन्ने अपनी रेडियो तो शशि जुदेया अनुमति।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
11: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून के रॉर कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर हो चुका तुंदे सभी रे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी हुंडे वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल ने श्रोतो तुंदे, उम्मीद करना तुंदे हाल चाल ठीक भुने तो है, सब घरे भुने और अपने घरे भुने ने खुश भुने तंदुरुस्त भुने हिन। खुश रहना तंदुरुस्त रहना अक्सर बोलनो बहुत ज़रूरी है, हर लाइफ में बोलनो अपने की बहुत ज़रूरी है जनाब, खुश रहना और तंदुरुस्त रहना। अगर तो है खुश हिन तो तुसो कोई बीमारी नहीं लग सकते है। बाकी ज़िंदगी रोज़मर्रा री चीज़ा सो की चल रही ने, रोज़मर्रा रही ज़िंदगी वे उतार चढ़ाव के न सुबह सो की चल रही ना और यहीं चले रहना है ना। इतनी कोई मतलब तो है कि सोच ले कि उतार चढ़ाव ना ही ज़िंदगी सामान्य तरीके होगी चल दे रही, ऐसा बिल्कुल भी ना बुना शो सामान्य तरीके होगी तो कोई भी चीज़ की सो ना चल दिया। आजकल सामान्य तरीके होगी कोई रिश्ता ना चलता था तो फिर ज़िंदगी है उतार चढ़ाव के न सो चली रहते हैं शोतों। लेकिन इन्या उतार चढ़ाव में भी किया सो अपने आप जो खुश रखना सभी मोटा टैलेंट हा शोतों, अपने आप जो किसी भी चीज़ जो ले करे खुशी बुझे अच्छा, कुछ भी हरकत करे करे खुश बुझेगा अच्छा, लेकिन खुश ज़रूर हुआ किसी भी किसी भी हेरे करे गया सो खुश बुझेगा अच्छा, लेकिन खुश भुआ ज़रूर शो तो। आऊँ सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर भुआ हा तुंदे सब भी रेडियो सेट में जनाब, तो सब कॉल कर सकते ना, अपना पसंदीदा गीत होने सकते ना और अपने क्षेत्र की जानकारी है वो गीत साझा कर सकते हैं। एक गलारा खास ख्याल रहे कि जानकारी की आसो साझा करने लायक ज़रूर बुआ, जानकारी की आसो दसने लायक ज़रूर बुआ शोतों, और वीडियो मंच शेयर करने लायक ज़रूर बुआ। बहरहाल समय रे आऊँ गल करूँ शोतों तो धर्मशाला रहा मौसम असू बेहद ज़्यादा ज़रूरी बुझ गंदा। बहरहाल अज तो पूरा दिन ठंडा ही रहो हा, मौसम काफ़ी अत्यधिक मतलब तोने भी इतने भी अत्यधिक ठंड ना थी, लेकिन हाँ नॉर्मली किया सो मौसम रहो ज़्यादा धूप किया मोस्टली क्लाउडी किया सो रहो। और समय रे गल करूँ शोतों तो 22 डिग्री रे आसपास किया सो धर्मशाला रहा टेम्परेचर बन रहा हा। ह्यूमिडिटी भी गल करूँ यानी कि नमी की गल करूँ तो लगभग 80% किया सो नमी बन रही है समय धर्मशाला मानता है धर्मशाला रहा मौसम। चलिए जनाब कार्यक्रम में बहुत सारी गल्ला हिन गल्ला बाता हिन जो तुस हो गया सो शेयर करनी इन साझा करनी न, कुछ एक गीत संगीत के अंशों भी तुसू तो करा सो ज़रूर पहुँचाने हिन श्रोतों, और तो सब ज़रूर कनेक्ट हो सकते हैं रोज़ाना सिंह 7081807090 पर कॉल करे करे और इसी सो की श्रोतों ये जानकारी तो हो गया है साझा करे। हम बाकी और भी बहुत सारी ऐसू लगे सो जानकारी पूजगी और पूछते भी आई न ते भी तुझ हो गया है ज़रूर कहने सो शेयर कर दे जानकारी है ना। चलिए तो आगाज कर लेना शो तो इंतज़ार है गीतर इंतज़ार हाँ तो इंतज़ार बड़ा अच्छा बंदा बड़ा सुहाना बंदा इंतज़ार करना चाहता। बहरहाल चलिए तो आगाज कर लें शो तो कार्यक्रम रेस गीत सोगे

चला जी शतो और भी गीत संगीत किना चल रहा ठीक है। चलिए गीत संगीत दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ एंड पार्ट ऑफ दिस रेडियो। बिल्कुल नमस्ते हकमो कैफेरी कजो के फेसबुक रहे जरिए भी है लाइव की ना सो हाजिर पूछे गए ना और ए पार्ट ऑफ लाइव भी है और पार्ट ऑफ इन द रेडियो भी है कि गीत संगीत किया सो हुनाना इन द कर्खा कर्तव्य बनेगा। अंदा और शो तो गीत संगीत हो इंसान रहा मन किया सो अगर बड़ा परेशान बहुत हो मैं तब इंसान की सो गीत संगीत होने लगा है ना तो मन थोड़ा हल्का बच गंदा जाने असू खुशी जाहिर करने बोआ ता है नचे लेंदेन है ना ये भी गीत

छुरे बुल्ले तो तिन्यो अप्पो भरना पैना वैस्क्यूरा खर्चा। जी बिल्कुल शोतो ए कुणी करो कि करो क्या बुआ क्या ने बुआ पूरी जानकारी तुस तक पहुँचन दे इन श्रोतो तो यह हूँ कर देने समय वेड़ी गुंजन और कार्यक्रम तुम तो अपना गादा कार्यक्रम किया सो चल रहा है श्रोतो कार्यक्रम का ना हिंदी अपनी गप्पा राम राम सचिन जी अश्वनी सुकेतिया जी राम राम जय श्री राम और तुंदा ये प्यार आशीर्वाद है तो अक्सर जन भी आऊँ लाइव इंदा तो है कमेंट किया सो जरूर कर देन फेसबुक के माध्यम तो चलिए राम राम जी तो सो कर दो कि अगर तो है ट्रैकिंग करे तो अपू तो सो भरना पैना वैस्क्यूरा खर्चा पूरी जानकारी दू तो पहुँचा इन शो तुम जिला कांगड़ा रही गल हा और धौलाधार पर्वत माँ है रिंदेहिन है ना धौलाधार पर्वत रे बिल्कुल गोदा माँ है रिंदेहिन इड़की ऐसो लगातार बड़ू करते शोतों ट्रैकिंग दुर्घटना है ना ट्रैकर्स रह लापता भूना और बचाव अभियान में इच्छुक करती काफ़ी कठिनाई शोतों और इन कठिनाई जो हेरद जिला प्रशासन है कि ऐसो सख्त कदम चुके न वे जिला मजिस्ट्रेट हेमराज भैरवन ने आदेश जारी करे हैं और जिला रे चिन्हित ट्रैकिंग रूट पर कि आसो ट्रैक शुरू करने तो पहले पंजीकरण जो अनिवार्य किया सो करी देता यानी कि ट्रैक शुरू करने से पहले तो सो के जो पंजीकरण अपना अक्सो अक प्रतिशत किया सो जरूर कराना हाँ दोस्तों जी बिल्कुल श्रोतो और पंजीकरण करना किया सो अनिवार्य भी हाँ श्रोतो ये आदेश तत्काल प्रभाव तो लागू हुए हैं शोतों और 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी के ने रहने हैं। जिला प्रशासन के अनुसार मानसून के दौरान धौलाधार क्षेत्र में भूस्खलन फ्लैश फ्लड घना कोहरा और घट घना कोहरा होता तो तुझे पता कि विजिबिलिटी के सजूर जीरो पुछगन के ऊपर है ना फिसलने भरे रास्ते इन ऊपर जाना है गंदे ट्रैक पर तो कितने बरसाड़े कितने फिसल दे इन रास्ते है ना और बेहद जोखिमपूर्ण किया सोए ट्रैक भुजगंदा हा और बिल्कुल जी सभी जय श्री राम जितने भी श्रोता जुड़ू करते हैं हेरु कर दिन इस समय लाइव कार्यक्रम जो फेसबुक के माध्यम तो भी तो आऊँ दसू करता तो 15 अक्टूबर तक किया सो अगर तो है बगैर पंजीकरण गंदे हैं तो सो आपू किया सो वैस्क्यूरा खर्चा किया सो भरना पैना है जनाब और बड़े और अच्छे गल भी हा जो कि डीसी साहब ये फैसला लियो तत्काल प्रभावित हो लागू भी करी दिता हा कि 15 अक्टूबर तक किया सो ये प्रभावी रहना जनाब फैसला और कजो क्या है सब बाखूबी जानते हैं ना वो बरसाड़ा तो ऊपर फिसलन लैंडस्लाइड भूस्खलन मतलब इतनी चीज़ा बुंदी ना ना तो थोड़ा करे किया सो चीज़ा खराब हो चुकी है ठीक है फैसला बहुत अच्छा फैसला और सोगे ये भी दसू कर दें कि जोखिम पूर्ण रहता है और अब है कि है कि कई मामले में ट्रैकर्स के अनुसार बिना किसी भी पूर्व सूचना एवं पर्वतीय मार्ग पर के असो निकले गंदे हैं जत्थों दुर्घटना भुनेरा किया सो ज़्यादा कारण रेंदे हैं शतों और तैयारी तलाश और बचाव अभियान लंबा गया सो चुनौतीपूर्ण बची गंदा है ना बगैर पंजीकरण गाना था चुनौतीपूर्ण तो भूना है शोतों का सो अब ट्रैकर्स जो कि सो दी तो सूचना भाई साहब पंजीकरण किया सो तो है ज़रूर कराए लैन बगैर पंजीकरण किया सो बिल्कुल भी ना गान है ना और इसी सो के शोतों कुछ एक ट्रैकिंग रूट पर किया सो बिंदु लू रहे 10 प्रमुख ट्रैकिंग रूट की पहचान करे आ कि इन्या मंज ना गाना जे क्या है सब बाखूबी जानते हैं शोतों है ना और मागरी ऊंचाई लगभग 36,600 मीटर रे बिच किया सुबूना चाहिए सभी ट्रैकिंग रूट रे जो प्रारंभिक बिंदु हैं त्यारे आपदा प्रबंधन और चेक पोस्ट स्थापित किया सुबूने हाँ जो प्रतिदिन बेगा 5 बजे लेकर संजा 5 बजे तक किया सुसंचालित रहने हाँ यानी कि चलने हाँ नए निर्देश के तहत प्रत्येक ट्रैकर या ट्रैकिंग समूह जो यात्रा शुरू करने तो पहले किया सो चेक पोस्ट पर किया सो व्यक्तिगत रूप रा किया सो पंजीकरण कराना आवश्यक है जरूरी है सोगी तीनों अपनी पूरी यात्रा योजना संपर्क विवरण और संभावित वापसी समय भी किया सो दर्ज करना है जो संभावित वापसी समय बुना

सो भी दर्ज कराना हा, ये भी अनिवार्य हा। प्रशासन रा उद्देश्य ट्रैक्स भी सुरक्षा सुनिश्चित करने वे सोगी सोगी किसी भी आपदा स्थिति में तीव्रता खोज एवं बचाव अभियान चलाना भी हा। यानी कि कुछ ऐसा भुजगन दाता चलो सरकार जो कि सरकार ल बायोडाटा बुना पंजीकरण बुछूर बुना ताँ बल्लू के व्यक्तिगत रूप तो क्या सो पंजीकरण कराना आवश्यक जरूरी हा। सो तो देखो जानकारी तो वेड़ी गुंजन धर्मशाला रे माध्यम तो हूँ करते हैं इस समय बिल्कुल लाइव हो रहा है फेसबुक रे जरिए भी गया सो बिल्कुल लाइव हिन बहुत सारे श्रोता सोगी बुन रहे जुड़ रहे हैं तय जुड़ी रहे बनी रहे तुम तो अपने वेड़ी गुंजन सोगे कुछ एक और अन्य जानकारी के अनुसार तुस हो गया सोई शेयर करनी साझा करनी हिन श्रोतों ता मुलदन थोड़ी देर बाद फिर तेत करे वेडियो सेट थो तुस हूँ देन प्यारा दया गीत ओ बहरहाल तो सब जुड़ी सकते हैं जनाब 708-8-8-709 पर नंबर आग मुके फिर शेयर करनो साझा करनो 708-8-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो सुनी सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। बहरहाल इन दिन इस गीता तो बाद तुम्हें सभी रे वीडियो सटमा वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच।

Shoto FM and Kyanu Dishamla by the Megahertz by Vedi Gunjan Dharam Shala to has a Vietune Guru or a Karikram Hindi opening up a children in Shotonta Chalizi Hira Manukatio Guldele Munjona Samaj Lagadea Days Bugulugarde, Mono Bugulugarde, Halaki Stai Kuch Vinis even ma Yasusabio Bakubi Pataha Askal Bida Lanera Kamkia Sochulro Bida Banande Bin Hana जो कि मच भी मच्छू करते हैं है ना उर लाऊ करते हैं धीरे धीरे है जमीन ना जो कि सुहागू खिसकंदे गंदे बीड़ा छेलते गंदे बीड़ा बढ़िया तरीकों की बनंदे गंदे हैं और सोगी सोगी शोतों। अच्छा ये बड़ी दिलचस्पी वाली गाल की सतुस होगी साझा लोगों को करना कि ये अक्सर बंदा ना कि थोड़ा थोड़ा है कि ऐसे हागू खिसकता चलता है। अच्छा घर का श्यामलाज बहुत है तड़ी था मतलब थोड़ा और भी ज़्यादा खिसकी गंदा है ना लेकिन इंसान जो है ना बता कि स्थाई तो कुछ भी नहीं है स्थाई थोड़ी ना है या कुछ भी है या हूँ कमाऊ करता या हूँ इडी बल्लू करता हूँ रेडियो स्टेशन में आप जो बल्लू करता तो स्थाई थोड़ी ना है कोई मुँह सारी उम्र बल्दे थोड़ी ना रहना है ना या सारी उम्र तुसू मेरी आवाज़ थोड़ी ना होनी नहीं है तो स्थाई तो कुछ भी नहीं कभी भी कुछ भी किया सब बुझ सकता जीवन में और इटिए तो न रहना कुछ भी सब कुछ था मिटेगा ना सब कुछ था चलेगा ना हाँ सो आक मेरे अक चहीते हिन तिंजे मुंजो की गल शेयर करी थी कि ऐह ये रुक कर देती है ये धर्मशाला री गल लेकिन धर्मशाला कस ग्रां री गल ना हो तुसू दस ही सकता तिंजे इधर सुखिया है जिथों मतलब पहले कम से कम 10 साल बुझ गए ये देवेंद कोई हिन दुई मतलब है बल्ली सकदन की कोई दुए मणु हिन जो इन दे सामने सामने किया सो हल्के हल्के बाढ़ दिन दे थी हल्की हल्की जमीन मतलब कवर कर दे थी है हल्की हल्की आज 10 साल अंदर थी ज़्यादा ना था कोई दुई की मरले या त्राई मरले जमीन किया सो कवर कर लिया है ना ई खिसकंदे खिसकंदे खिसकंदे खिसकंदे तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब ऐसी हरकत क्यों करनी है असु क्यों कर देने ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी है असु अंदर है ना कि जो परमात्मा दितुरा जो असु ले हा सो ये सोचा कि बस यही है असु ले भगवान नरा दितुरा की सो है हाँ मेहनत करा ना मेहनत हो मत डरा आऊँ अक्सर बोलूँ मेहनत करने वाले री कदी हार ना बंदे तसी भगवान की असो जरूर हेरदा हा और बेहतरीन विकल्प की असो तसी वास्ते खुल करे भी रखता हा लेकिन इस तरीके हो कि कस के भी ज़मीन के असो हड़पने इस तरीके हो कि कस की ज़मीन पर के असो धीरे धीरे कब्जा करना या इस तरीके हो कि असो मतलब अपनी बीड़ा बनाए बनाए करे थोड़ा करे और हगू हगू खिसक देगा ना बीड़ टेढ़ी कर देगा ना या बाढ़ टेढ़ी कर देगा ना बाड़ा जो हगू हगू खिसक देगा ना तो ये सरासर गलत है और एक ये भी है बुरा कर्म की असु करू कर दे ना ये तो है सियाने थों भी हूं रहा और सब बल दे कि इन दे कंधे पर गया सुहाक खरा कबूतर बिखुरा चिट्टा कबूतर तो है दुआ काला कौआ बिखुरा ला यानी कि इन दे कर्म किया ना सो सब नोट बुच्छू कर दे और एक बड़े विद्वान ने मंजो की किया सो ये गल शेयर करी थी कि यह जो गलती कर देन ना बेगा करे या देने करे था भगवान भी तह गलती रखिया सो मतलब है कस क्योंकि गलती करो तो भगवान भी संजय तक किया सो बहालदा या जो आंसू इन दे कंधे पर जो ऑक्साइड कबूतर बिखरू ऑक्साइड कौआ बिखरू था सो काला कौआ के सो भी हेरदा कि हूँ सर आज बुरा कर्म संजय लिख लो शायद संजय तक किया इसी सुधार चली या या ये माफ़ी मंग लिया सो एक कर्म के अनुसविंद लिखे करते हैं और कदी कसी होगी बुरा मत करा शो तो हम तो हमेशा बोलूँ हाँ ये जमीन इट्ठी रह गाने है ये जायदाद इट्ठी रह गाने है ये घर बार गड्डी सोना बंगला चांदी सब कुछ इट्ठी रह गाना सिर्फ यह सिर्फ एक मतलब ये अपनी जिंदगी के ऐसो जी व्यतीत करू करते हैं जीव करते हैं अपनी जिंदगी जो बाकी तू गोरा आऊँ काला ये भी ठीरे गाना कि फलाना बड़ा गोरा कि फलाना बड़ा छैड़ा हाँ सोगी गाने तो तुंदी कुछ बेहतरीन यादा के अनसो खिची सकदीन सो इड़ी स्थाई बुची सकदीन इड़ी स्थिर बुची सकदीन
सिर्फ और सिर्फ तुंदी बेहतरीन यादा जो तो है कसकी होगी खरा गुरु बुला सो यादा क्या ना सो डी रही सकदीन छोतों बाकी इस कम होगी ये काम अगर है कर दे वे लता इन द करम किया सो अपने आप बुरे बंदे चल रहे हैं और फिर भगवान बुरे कर मरा सजा किया सो बहुत तकड़ी दिंदा बहुत बुरी दिंदा ला। तो चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ने तो सब बन रहे हैं इस समय आर जे सचिन कपूर सो की कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव फोन कर देने अपने अपने रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रहे।

0: चलिए श्रोतों, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही बिल्कुल लाइव तुंदे वीडियो सेट में। और अब वक्त हो चुके श्रोता वाला, क्यों चुके श्रोता जो करते हैं वह है कनेक्टेड। श्रोताओं नमस्ते जी, वीडियो गुंजन में स्वागत है।
1: नमस्कार भाई जी, आदि कपूर गलिंदा रिश्ता जी।
0: जी अजय जी, ठीक ठाक राजीव बाजी?
1: बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। तुम्हारा और भोलेनाथ आशीर्वाद और बरकत लगे।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। तो इधर सीता का जो कि इसी वेस ले आऊँ अंदर भी कुछ, अब जो स्टूडियो में था मंजू ने पता बाहर लग रही बरखा की ना लग रही है। चलिए तो इधर सीता की इस इलाके में आगे ऐसा बरखा बुच्चू कर दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, भगवान जो कहे करेला,
0: हाँ जी
1: भगवान तो नहीं कहे करेला कि अंदर जाए वो ठंडा और कहे ठंडा।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: इसी
0: बिल्कुल
1: का जीवन है ना सचिन भाई जी।
0: जी जी भाई जी जी अच्छा कौन बोल
1: और
0: रहे हैं? अजय जी बल्लू कर दें तो है अपने रखड़ा था हूँ।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ठीक है जी। अजय जी पहले फरमाइश दस दे अपनी फरमाइश की। धाम लगो रे रक्कड़ सिद्धवाड़ी, क्या है कटेरे धाम का उपलक्ष्य मा धाम है?
1: अच्छा
0: जमालू है निंदे पड़े की कौन ने जी?
1: भाई
0: अच्छा सम्मी भाई जी,
1: भाई
0: अच्छा साहिल भाई।
1: और अपने लाल जी का
0: हाँ जी क्या फरमाइश है जी?
1: सारा नहीं है यारा बड़ा नारी जो सुनोर जी वो तीन दा गुरु गुलाल जी दा
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। अजय
1: अपने
0: जी
1: तीन पुत्र भी और तुम्हारा जितनी टीम आ जो तो काम करो जो तो
0: बहुत
1: समझ गया नहीं।
0: क्या बात है संधु साहब, बहुत बढ़िया। अतः क्या फरमाइश है संधु साहब तुम्हें? जरा जल्दी दस दे आप पूछूंगा तो बहुत सारी कॉल से छुकर दी ना और कनेक्ट करनी ना सो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सभी तुम्हारे से नाग देवता ने यार नाग
0: इंदु नाग महाराज जी जी
1: देवता
0: फिर
1: साहिल भाई बोलो ना नाग देवता।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। तू सब भी वह जरूर होना ले भजन है ना जी?
1: और तुम भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, जितना भी उन्होंने तीनों भी इंद्र नाग देवता आशीर्वाद दी।
0: चलिए ठीक है जी जी धन्यवाद धन्यवाद
1: ओके भाई जी, धन्यवाद।
0: जी। श्रोता तो ऐसा श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर। नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करने तू होगी 7 0 8 8 8 8 7 0 9 8 पर।
1: मैंने
0: इन द अगले श्रोता आस होगी कनेक्टेड हैं उस दिन कौन बोलूँ दिन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, आशीर्वाड़ी से बोल रहे थे,
0: अच्छा जी क्या ना तुंदा?
1: आशीर्वाड़ी से मैं ना बंदना देवी है। हाँ
0: वंदना देवी जी
1: जी, मेरे
0: कुंडने
1: सचिव साहब, मेरे मंडी अरे साहब।
0: मेरे मंडी अरे साबू। अच्छा
1: हाँ जी, कैसे
0: क्या बात है, कड़ी हुन रोए गीत तो
1: उतरे
0: है।
1: मार्च आए।
0: हाँ
1: हाँ
0: जी
1: जी, चाचे मारे जी तो आए थे। हाँ
0: चाचे भी फरमाइश है।
1: जी हाँ जी, मारे ओ
0: अच्छा
1: ब्रिटिश लोगों
0: हाँ जी
1: को नमस्कार,
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: ब्रिटिश लोगों को पीतो क्या
0: प्रीतम
1: बोलो
0: जान जी। अच्छा, प्रीतो
1: तो
0: ब्राह्मण।
1: मना
0: हाँ
1: हो गया मेरे मंदिर के साबु
0: जी
1: गाना होना मेरे मंदिर के साबु।
0: ओ बिल्कुल प्रीतो ब्राह्मण जी, हुनाना तुसु गाना क्या चिंता ले रही तो है करना। और दसा नोई ताजे हुनाई दिया कुछ आसू भी है भी तुसु वो हुनंदे रंदे तो है इंदे। अच्छा दुआई खाओ कर दें तो है ना? अच्छा चलिए ठीक। हाँ जी हाँ जी मत तेड़े आए यार तुसु जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है जी, जरूर होना ले तो सोएगी था ना जी। धन्यवाद। श्रोतम एफ एम बैंड 91.6 दशमलव पर तो मेगा हर्ट्स पर है वीडियो गुंजन। धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इस समय हिंदी अपनी गप्पा के लाइव चल रही हैं जी की तो है भी रुकर देता श्रोतों। चलिए कार्यक्रम जो हगो बढ़ देना और तू सब भी आपके जानकारी और तू तक हम पहुँचाई देना वहाँ की जनाब ईरान और अमेरिका रा सीज फायर किया सो ख़त्म बची गोवा और युद्ध किया सो फिर आप मौके शुरू बची गोवा। जी बिल्कुल ये थोड़े करे हताश करने वाली गल जरूर आ खबर जरूर आ नाराज करने वाली खबर जरूर आ जो कि तेल पहले ऑलरेडी किया सो इतना महंगा हा और बिच अंदर सीज फायर हुआ कुछ टाइम लेकिन दातों बाद फिर कंटिन्यूसली इंजा किया सो करी दिता जी युद्ध किया सो शुरू करी दिता हा हमरूज मा जहाजा पर ईरानी हमले तो बाद किया सो अमेरिका राष्ट्रपति गुस्सा हुए हैं और ये काफ़ी वाकई में थोड़ा करे ना असु सभी वास्ते ठीक नहीं है ये लड़ाई किया सो नहीं है ठीक। ईरान द्वारा हमरूज मा जहाजा पर फिर किया सो हमले तो गुस्सा हुए ना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इतना ये ऐलान करो कि ईरान वैसोगी बछूरे सीज फायर जो है समाप्त कर दें MOU अब ख़त्म बुझगो है और अब सो ईरान तो कोई डील किया सो ना चाहते हैं बिल्कुल। और ट्रंप ये भी बोलो कि यह ज़ोरदार हमला करने वास्ते किया सो बिल्कुल तैयार हिन और ईरान के सो अब इंदे हमले तो बाहर ना बोल सकता था अमेरिका की सो ईरान रे 80 सैन्य ठिकानों पर किया सो एयर स्ट्राइक करे हा अमेरिका श्रोताओं और ईरान ने किया सो पलटवार कुवैत बहरीन अम्मा के सो 75 अमेरिकी ठिकाने पर 75 अमेरिकी माफ़ करें 85 अमेरिकी ठिकाने जो कि ऐसा निशाना बनाऊ हा श्रोताओं। तो कुछ लड़ाई चल रही न जनाब और फिर ही बोलना चाहूँगा कि स्थिर तो कुछ भी नहीं है रहना तो कुछ भी नहीं है ना सू रहना ना तसू रहना कुछ किया मारू कर देना कुछ किया मारू कर देना कुछ किया क्या बच्चू करता हा पर चलो फिर ही बोल लो कि स्थिर तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देन इंदी अपनी गप्पा और इंदुन महाराज जी की सो बरसों कर देन ता आइया पहले यारी फरमाइश में गीत के सो होन लेन देन और तत्थों बाद अगली कुछ फरमाइशा जरूर हो।

0: बिल्कुल शो तो इन्ह फुला ना तोड़ मालिने इन्ह फुला विच नाग बसत है। और फिलहाल ता आऊँ सचिन कपूर तुसु थों ले लेनो इजाजत, गजो के शो तो समय बुझ गो तुसु सब भी थों इजाजत लेने रा तो लेना बैने इजाजत है ना। और हमेशा जो बोलनो सो ही बोलनो, मेरी वाणी माँ इस मैसेज जो लेकर कोई विराम की सोना बुझ सकता है कि माता पिता की सेवा करते रहे, पर्यावरण जो साफ सुथरा रखा जितने पूछ सकते, अपनी ओर तो कोशिश करा कि कूड़ा करकट के ऐसो ना फैलान, अपने हिमाचल जो कम से कम साफ सुथरा ज़रूर है बनाए कर रखने प्रयास किए जो है ज़रूर कर देन, जी हाँ अपने घर जो साफ सुथरा बनाए कर रख देन, तियाँ हिमाचल जो भी साफ सुथरा बनाए कर रखने की कोशिश कर रहे, यानी कि जड़ी अह बाहर उगान घूमना फिरना तड़ी गंद की असो ना फैलान, इन चीज़ों थों की असो है ज़रूर सतर्क रहन। और आऊँ सचिन कपूर है वह तुसु थों इजाज़त ले लेनो, जो कि गंदे गंदे आक आखिरी फरमाइशा सो फरमाइशा सो ज़रूर पूरे करने हैं। और इन दे आक श्रोता असु होगी कनेक्ट लगे हिन बूना, जरूर कनेक्ट कर लेंगे लेकिन अब फरमाइश तो बुझेगी ऑलमोस्ट। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: हाँ जी, और भाई जी क्या हाल चाल?
0: बहुत बढ़िया जी। कौन बोल रहे और कड़ी तो बोल रहे
1: हैं? कंडी में बोल रहे भाई।
0: कंडी में कौन सी?
1: प्रीति बोल रहे
0: हैं। हाँ जी,
1: प्रीति बोल रहे कंडी में।
0: अच्छा जी, स्वीटी जी क्या हाल चाल, ठीक ठाक ना?
1: हाँ जी, ते बल्ला।
0: बढ़िया जी, बढ़िया है भी, ठीक ठाक ना? स्वीटी जी तो बड़ी लेट फोन करो तो है।
1: हाँ जी, जर के बर्खा लग रही है, मामर के रख रही है, बाप सब जो आए थे फिर मैं कॉल कर लेंगे टाइम अपन मिनट अंदर।
0: हाँ तो फरमाई शासू ले पेंडिंग प्यूरी ना।
1: अच्छा चलो कोई ना,
0: चलिए ठीक है प्रीति जी, दुत्ता फिर मुलाकात बंदे तो सो की जरूर कर ले, कनेक्ट बंदे तो है ना जी।
1: हां जी चलो ठीक है, नाउ लेट्स
2: गेट स्टार्ट। कोई अपनी सुंदर गाना होना
0: चाहिए लर्न बाय डूइंग। मेरी पसंद तो कुछ भी नहीं प्रीति जी, हिंदी तो इच्छा है, हिंदी तो इच्छा के न सो अब आई नहीं ना। हेलो।
1: हां जी
0: मेलो प्रीति जी, हिंदी तो इच्छा है नहीं ना बे ना। हिंदी इच्छा पूछू रही है पूरी जो बोनी थी।
1: अच्छा चलो ठीक है, दोबारा दस ली।
0: हाँ तू दस है, तू दस है प्रीति जी, हिंदी तो इच्छा पूरी पूछू रही जो बोनी थी। अब चलो ठीक है,
1: कोई ना दस ली कम दे गाना होना
0: भी ठीक है जी। दोनों हाथ जोड़ कर तू सो नमस्ते करनो।
1: हाँ जी बिल्कुल जी,
0: नमस्ते।
1: ठीक
0: चलिए शोतों फिलहाल तब इजाज़त ले लेन देन का, जो कि समय पूछेगा शोतों का खरी फरमाइश सो कर लेन देन पूरे बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गे गूंज अपने बन रही और गूंज रेडियो गुंजन धर।

नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। बीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल लॉन्च। ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म, युद्ध शुरू। सीबीएसई स्कूलों में भर्ती होंगे 3,468 शिक्षक। चौकीदार कुक को ट्रेनिंग देगा वन विभाग। अब समाचार विस्तार से।

बाहर नवोदय विद्यालय पपरोला के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतु बाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अभिभावकों, अध्यापकों एवं पात्र विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी, पात्रता आवश्यक दस्तावेज तथा प्रवेश विवरण नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार में सुगमता को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि नीति को व्यापक और उद्योग अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है, साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य एवं आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि परियोजना के नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने पानी, बिजली तथा सिविल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को प्लांट की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बिजली एवं पानी की मांग का विस्तृत आकलन तैयार करने को कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने वीबीजे रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा की ओर से जारी आदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आधारित और सहभागी विकास कार्यों की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के होंगे विकास कार्य अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना के तहत कार्यों की पहचान कर उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों पर कदम बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने आवास प्लस सिस्टम में एक नया पोस्ट रिलेशन मॉड्यूल आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ बिना किसी पक्षपात के केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुँचे। ईरान द्वारा होर्मुज में जहाजों पर किए गए हमलों से गुस्साए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता अब खत्म हो चुका है और वो अब ईरान के कोई ढील जो है वो नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने मंगलवार रात ईरान पर जोरदार हमला किया और खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। अमरीका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। बुधवार को नाटो समिट के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ये ऐलान किया और नाटो पर भी नाराजगी जताई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति में है। इनमें 19 श्रेणियों के 2,668 पर नियमित पदों का मामला राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है। शिक्षा मंत्री बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उनका कहना है कि 800 अस्थायी अंग्रेजी व गणित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जा रही है। प्रदेश में इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जा रहे विश्राम गृहों में पर्यटकों को बेहतरीन मेजबानी के लिए बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए विश्राम गृहों में तैनात चौकीदार कुक को नामी होटल मैनेजमेंट संस्थान मेजबानी के लिए तैयार करेगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए इन्हें कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी के गुर सिखाए जाएंगे। बड़ी बात ये है कि इन रेस्ट हाउस में सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूहों समेत महिला व युवक मंडल सदस्यों को भी इस विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था वन विभाग ने की है।
दो बिजली मीटरों पर सब्सिडी प्रदान करने के फैसले के बाद ई केवाईसी की राज्य भर में प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई केवाईसी कर ली है, जिसमें 18 लाख से अधिक को दो बिजली मीटर पर सब्सिडी का लाभ बिजली बोर्ड ने प्रदान किया है। हालांकि ई केवाईसी की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां भी सामने आई हैं, जिस पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई कर प्रभावी कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को नई दिशा देने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC ने कांच की खाली बोतलों की वाईवैक योजना शुरू कर दी है। योजना से अब HPMC के उत्पादों की इस्तेमाल की गई कांच की बोतलें लौटाने पर उपभोक्ताओं को नकद प्रोत्साहन मिलेगा। निगम का उद्देश्य कांच के कचरे को कम करना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अगले साल राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट कंप्यूटर आधारित होगी और इसे 6 दिनों में करीब 1000 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। सूत्रों की जानकारी है, किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अगले साल से नीट पारंपरिक कागज कलम के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कांगड़ा की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में लगातार बढ़ रही ट्रैकिंग दुर्घटनाओं, ट्रैकर्स के लापता होने और बचाव अभियानों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज फेरवा ने आदेश जारी कर जिले के चिन्हित ट्रैकिंग रूटों पर ट्रैक शुरू करने से पहले पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावित रहेंगे। साथ ही उन्हें अपनी पूरी यात्रा योजना, संपर्क विवरण और संभावित वापसी समय भी दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ किसी भी आपात स्थिति में त्वरित खोज एवं बचाव अभियान चलाना है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग करता है अथवा निर्धारित मार्ग से बिना सूचना भटक जाता है और किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसके बचाव के लिए आवश्यक होने पर निजी रेस्क्यू टीमों की सेवाएं ली जाएंगी और ऐसे सभी बचाव अभियानों पर आने वाला पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति या समूह से वसूला जाएगा। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम पहुंच गए हैं स्टूडियो और अब शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और बोल रही हूं आपके पसंदीदा चैनल 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस संध्याकालीन सभा में।

और मौसम कैसा है आज का वो तो आप देख ही रहे हैं। आपने अपने कामों से पहुंच गए आप घर? अगर पहुंच गए हैं तो चाय की चुस्की भी चल रही होगी और उसके साथ साथ हम आप सभी के मनोरंजन के लिए लेकर आए हैं बड़े प्यारे प्यारे से गीत भी। और आज के गीतों में भी ना कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास है, उसको मैं बताऊंगी कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे आगे पिटारा खोलूंगी। बस एक दो गीतों के बाद आप समझ ही जाएंगे कि आज के इस कार्यक्रम के गीतों में क्या ख़ास है। थोड़ा सा आपको भी समझने का मौका देंगे ना, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार वो राज क्या है। तो चलिए मौसम की बात कर रहे हैं। धर्मशाला में तो आज मौसम आमतौर पर हल्की बारिश और बादलों से घिरा हुआ ही रहा। कभी कभी बारिश आई, कभी कभी बारिश चली गई, फिर थोड़ी थोड़ी धूप भी दिखाया इसने हमको, और फिर अभी फिर से बारिश शुरू है। लेकिन जब मैं घर से निकल रही थी करीब 5:15 के करीब, तब बारिश बहुत तेज़ लगी थी और ये कह रही थी कि आज तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन मैंने भी हिम्मत करके अपनी डबल डबल रेनकोट पहने, एक आगे से एक पीछे से, और फिर उसके बाद स्कूटी पकड़ी और निकल आई। और शुरू होता पता क्या है, जब आप हिम्मत कर लेते हो ना किसी भी चीज़ की, मतलब बैठे रहते हो तो ऐसा लगता है कि ओहो हो ये तो बहुत मुश्किल है, आज तो नहीं हो पाएगा भैया, आज हम कैसे जाएंगे। लेकिन जब हिम्मत कर लेते हैं ना हम, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और फिर क्या हुआ, हुआ ये कि जब मैं वहाँ से चल पड़ी तो धीरे धीरे धीरे ये बारिश जो है वो कम भी होती चली गई। हो सकता है कि जो ज़्यादा वाली बारिश थी वो मैं पीछे छोड़ती चली आ रही थी, और आगे आगे ये बारिश थोड़ी थोड़ी थमती थमती थमती जब मैं स्टूडियो तक पहुँची तो बिल्कुल ही

लेकिन जैसे कि मैं अपनी पूरी दोनों बरसातियों का यूज करके आई हूँ, वैसे ही आप सभी से भी हम हमेशा यही कहते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, सर्दी का हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी सावधानी रख करके चलिएगा। और अभी आगे आने वाले समय में भी, मतलब रात को भी, रुक रुक करके बारिश होने की संभावना है। तो जब भी आप किसी ऐसी जगह से निकलते हैं, जैसे कि आपने देखा ही है सुधेड़ के पास में भी वो बड़ा सा लैंडस्लाइड वो पिछले साल से हुआ पड़ा है, अभी और अगर बरसात इस तरह से होती रही, क्योंकि उसका कोई काम तो करवाया नहीं गया, तो वो खतरा बन सकता है। तो एक वैकल्पिक रास्ता है, उस रास्ते का इस्तेमाल कर लिया करें, वहाँ से ना आया जाया करें। भाई हम तो अब यही कह सकते हैं आप लोगों को। यानी कि अपनी सेफ्टी मेजर्स आप सभी के अपने हाथों में हैं, और बाकी तो फिर अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई कुछ होता है तो फिर तो आपके पास और बहुत सारे विकल्प हैं, अस्पताल हैं और इस तरह की चीज़ें हैं जहां पर आप जा सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना सबका अधिकार है। चलिए कार्यक्रम में और भी बातें करेंगे आपके साथ। फिलहाल आप के लिए ये प्यारा सा गीत और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी गीत के साथ। फिल्म का नाम है खामोशी, गायक कलाकार किशोर कुमार।

खामोशी फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं आज का विचार ले रही, हार केवल उसी की होती है जो कोशिश करना छोड़ देता है।

फटी सी हमारी तस्वीर आपको नजर आती होगी, लेकिन फिर भी कोशिशें हम करते रहते हैं ना, क्योंकि हम हारना नहीं चाहते और ना ही हमने कभी सीखा है। और ये कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं ना जो चलती ही रहती हैं, अब चाहे छुट्टी वाला दिन हो या कुछ भी हो, लेकिन आप तक जिसने पहुंचना है पहुंचना ही है। जैसे कि डाक की सेवा है और ये रेडियो है, ख़ास करके रेडियो, या फिर मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या फिर आप जो देखते हैं मीडिया, वो वाला मीडिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, या नेट हो गया, इंटरनेट हो गया, और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, आप गिना सकते हैं, अपने लिस्ट में जोड़ सकते हैं। रोटी हो गई, दूध, कपड़ा, मकान, मतलब सब कुछ जिसके बिना काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। दवाइयाँ हैं, मेडिसिंस हैं। अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो केवल इतना कहूँगी कि कोरोना काल को याद कर लीजिए, और जो ज़रूरी सेवाएं थी ना उनको बिल्कुल भी रुकने नहीं दिया गया, तो बस वैसी वाली सेवाएं आप तक पहुँचती रहती हैं। क्योंकि वो लोग जो इन सेवाओं में लगे होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने ये सेवा करनी है, तो बस वो आगे बढ़ते चले जाते हैं।

लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। दो बीघा जमीन फिल्म का गीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। वैसे अभी सावन आया तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से ये बरसात अब शुरू हो गई है ना, तो ऐसे ऐसे गीत सुन करके मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है। बस कुछ ही दिनों में सावन आने भी वाला है, 15 या 16 जुलाई को ये सावन जो है वो उतर आता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो शिव का महीना होता है। और लोग जो हैं वो पूरी श्रद्धा से, जोर शोर से, अपने अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। तो ये सब तो होता ही है। आज के सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर लें, क्योंकि एक नहीं है, दो तीन हैं। तो गुरुदत्त आज के ही तारीख में जन्मे थे, 1925 में। भारतीय सिनेमा के एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त में एक संपूर्ण कलाकार बनने की सारी योग्यताएं थी। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक भी रहे। साथ ही उनकी सभी फिल्मों में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक मिलती है। वो कुशल नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने प्रभात फिल्म्स के कोरियोग्राफर के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अभिनय कभी भी उनकी पहली पसंद नहीं थी, लेकिन उनके सरल, संवेदनशील और स्वाभाविक अभिनय ने की सभी ने सराहना की। उन्होंने पहले प्यासा के लिए दिलीप कुमार को चुना, और वे एक रचनात्मक लेखक भी थे, और उन्होंने पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में कहानियाँ भी लिखी थी। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इसी तरह से के बालाचंद्र एक प्रख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक रहे। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2010 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उनका जन्म भी 9 जुलाई 1930 को ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के नलिलम में हुआ था। इस दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता ने हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए से उत्तर भारत में अपनी पहचान बनाई थी, और उस समय ये फिल्म बहुत हिट गई थी, जिसके गाने तो आजकल भी खूब हिट जाते हैं, मतलब अभी तक भी वो उसी तरह से सुने जाते हैं। तरह से आज संगीता बिजलानी का जन्म भी हुआ 1960 में, और संजीव कुमार का जन्म 1938 में हुआ था। इनके बारे में कार्यक्रम में आगे बात करेंगे।

फिलहाल आपको लिए चलेंगे एक और गीत की ओर। और अब आपका वो आपकी मेहनत शुरू होती है। अब आपने पहचानना है कि आखिरकार हम आज के इन गीतों में क्या खास करने वाले।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे थे ये गीत। गाइड फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

जी श्रोताओं, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। ये जो गीत अभी आपने सुना, आपकी परछाई फिल्म का, मोहम्मद रफी की आवाज में। खास बात इस गीत की, ये राग यमन पर आधारित था। और अब कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही गीत आप सुनने वाले हैं जो कि इसी राग पर आधारित हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा ये भ्रम होगा कि सभी गीत तकरीबन एक जैसे ही हैं। जी हाँ, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो उसको सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि ये जो गीत हैं ये सारे के सारे एक ही बीट पे हैं और एक जैसी ही धुन है इनकी, पर ऐसा है नहीं, राग एक है। उसके बाद जब आगे चलता जाता है गीत तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जानना चाहते हैं आप, एक गीत और सुनिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नरगिस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजें हैं।

तो दोस्तों ये जो राग यमन कल्याण पर आधारित गीत हैं, खास करके ज़्यादातर तो मैंने आज कार्यक्रम में वही रखे हैं, लेकिन राग यमन कल्याण को अगर छोड़ दें तो राग यमन पर भी बहुत सारे जो गीत हैं वो बने हुए हैं। लेकिन होता क्या है ना, इन सभी गानों की शुरुआत राग यमन कल्याण के एक खास स्वर समूह यानी कि नोट पैटर्न से शुरू होती है, मुख्य रूप से नीरे गामापा। अब ये वो जो संगीत के स्टूडेंट्स हैं या जिन जो लोग संगीत से ज़्यादा अटैच हैं वो लोग तो ज़्यादा समझ पाते हैं इस बातों को, लेकिन अगर आप आम लोग भी इंटरेस्टेड हैं समझना चाहें तो ज़रूर समझ सकते हैं कि इसमें नीरे गामापा में म जो होता है वो तीव्र होता है और यमन कल्याण की विशेषता के रूप में कभी कभी शुद्ध म का स्पर्श भी आता है।

अब देखिए कई बार ना लोगों के मन में ऐसा भी रहता है कि एक ही तरह के, मैंने कई सारे वीडियोस देखे तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि ये 10 गाने हैं और 10 गाने जो हैं एक ही धुन पर आधारित, एक ही जैसी धुन है इनकी, लेकिन ये नहीं समझते हैं लोग कि वो एक जैसी धुन नहीं है, वो राग एक है इसलिए वो एक जैसा लगता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे लाल रंग से कोई गुलाब बनाता है तो कोई उगता हुआ सूरज, वैसे ही राग यमन कल्याण एक रंग है और उस रंग से अलग अलग संगीतकारों ने अपनी तस्वीरें यानी कि अपने गाने बनाए हैं। और हमारा दिमाग जो होता है वो गाने के शुरुआती 3-4 सेकंड्स को पकड़ता है और इन गानों का शुरुआती चलन जो है आरोह अवरोह की बंदिश एक ही स्वर पट्टी पर है, इसीलिए सुनने वालों को ये लगता है कि इसकी जो धुन है वो दूसरे गाने से चुरा ली गई है, परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर हम संगीत की भाषा में कहें तो इसे संगीत की भाषा में प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन या फिर राग आधारित समानता भी कहते हैं, साहित्यिक चोरी नहीं। चलिए ऐसा ही गीत एक और सुनवाते हैं आपको।

श्रोताओं आप बताते हैं आपको पिता की धुन और बेटे का कमाल। जी हाँ, ये जो गीत है ना, जो अगला गीत भी मैं आपको सुनवाने वाली हूँ अब, उनमें भी एक समानता है। समानता तो वैसे हमने आपको बता ही दिया है कि आज राग यमन कल्याण पर आधारित कुछ गीत आपके समक्ष लेकर आई हूँ, लेकिन अब ये जो गीत अभी आपने सुना नरम गरम फिल्म का, आशा भोसले की आवाज़ में, और एक और गीत जो आगे आप सुनने वाले हैं नौजवान फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज़ में, इन दोनों में क्या समानता है उसको ज़रूर जानिएगा।

साल 1951 में पिता एस डी बर्मन ने फिल्म नौजवान के लिए ठंडी हवाएं, जी हाँ, ये गीत बनाया था।

ठीक 30 साल के बाद 1981 में उनके बेटे आर डी बर्मन पंचमदा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नरम गरम में इसी धुन और राग यमन कल्याण की चाल को दोबारा से जीवित किया। गाने के बोल थे, वही हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। लेकिन एक खास बात है जो इसे बाकी गानों से जुदा करता है। ठंडी हवाएं गाने को जहां लता मंगेशकर ने बहुत ही सीधे सरल और शांत अंदाज में गाया था, वहीं पंचमदा ने इस गाने के लिए आशा भोसले को चुना, यानी दूसरे गाने के लिए जो आप पहले सुन चुके हैं। आशा जी ने राग यमन कल्याण के इस मीटर में हल्की सी हरकतें, मुर्कियां और खटके जोड़ी, जिसमें प्यार का एक अलग तरह का चंचल और गहरा एहसास है जो लता जी के गंभीर विरह वाले वर्जन से बिल्कुल अलग प्रभाव पैदा करता है। इसीलिए मैंने पहले आपको वो गीत सुनवा दिया ताकि अब जब आप ये गीत सुनें तो आप दोनों का जो कंपैरिजन है वो कर सकें।

पुराने गानों में जहां बांसुरी, सितार या वायलिन का अधिक इस्तेमाल था, आरडी बर्मन ने उस गाने में एकॉस्टिक गिटार और हल्के ड्रम बीट्स का इस्तेमाल करके राग यमन कल्याण को एक मॉडर्न रोड ट्रिप या फिर ट्रैवलिंग सॉन्ग जैसा फील दिया।

कलाकार गुलजार साहिब ने इस गाने की बोल इस तरह से लिखे कि वो सीधे ठंडी हवाओं के मीटर में फिट बैठते हैं। ठंडी हवाएं लहरा की आए छह मात्राओं का एक टुकड़ा है, और जहां पर बात आती है हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, उसी गति और लय पर वो भी आधारित है। मुखड़ा सुनते ही भले ही ठंडी हवाओं की याद आई, लेकिन जैसे ही गाना हवाओं से हमने तुम्हारा पता पूछा वाले अंतरे पर जाता है, तो पंचम दा धुन को पूरी तरह बदल देते हैं। अंतरे में राग यमन कल्याण के शुद्ध म और तीव्र म का जो कंट्रास्ट यानी विरोधाभास इस्तेमाल किया गया है, वो केवल आर डी बर्मन ही कर सकते थे।

इसी तरह के और भी गीत उन्होंने आगे चल करके बनाए जो कि मैंने कार्यक्रम में शामिल किए हुए हैं। मैं ज़रूर आपको सुनवाऊंगी धीरे धीरे, और फिर आप ये जो बात मैं अभी आपसे कर रही हूँ इसको फील कीजिएगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला।

श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि 1 से 14 अगस्त तक धर्मशाला में होगी अग्निवीर भर्ती रैली। कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं के लिए 1 से 14 अगस्त तक धर्मशाला के सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियों को लेकर के अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आज हुई, जिसमें कि समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें विभिन्न विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मानसून के मद्देनजर सभी विभाग अपनी तैयारियां समय पर पूरी कर लें ताकि सब भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। और उन्होंने अभ्यर्थियों के ठहराव के लिए वाटरप्रूफ टेंट, पार्किंग, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय, बिजली और इंटरनेट सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए हैं और साथ ही प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अधिकारियों की तैनाती करने को भी कहा है।

0: केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुँचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गति उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए गुणवत्ता और बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रणाली स्थापित करना है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक आज कोच्ची में संपन्न हुई। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के सामने महिलाओं के विकास से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझा चिंताएं ब्रिक्स महिला मंत्रियों के मंच जैसे प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाती हैं। ये सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथी T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, समाचारों के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं करने आप सभी से बातचीत। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिन हमारे श्रोताओं ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं। बस ये हमें पता है कि समाचार भी आप बहुत ही शिद्दत से सुनते हैं। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको राग यमन का ही एक और खूबसूरत गीत। राग यमन के जो गीत है ना, वो मन को बहुत सुकून देते हैं।

श्रोताओ, इस गीत की विशेषता यह है कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि समुन्दर की लहरों की गूंज और पानी की आवाजों से होती है। और राग यमन का स्वभाव शांत और गंभीर होता है। पंचमदा ने प्राकृतिक माहौल का इस्तेमाल करके श्रोताओं को सीधे उसी शाम के धुंधलके में पहुंचा दिया जहां ये राग सबसे ज्यादा खिलता है। और लहरों की आवाज के तुरंत बाद किशोर कुमार की मखमली आवाज में आलाप गूंजता है, फिर लता मंगेशकर की आलाप रूपी पुकार आती है सागर किनारे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं बल्कि गहरा ठहराव और नशा है जो इस राग की सबसे बड़ी खूबी है।

गाने में भारी भरकम ड्रम्स या इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पंचम दा ने इसे बहुत ही हल्का रखा है।

गाने के बीच बीच में बांसुरी, फ्लूट और एकॉस्टिक गिटार के छोटे छोटे पीस बजते हैं राग यमन में। बांसुरी के सुर सोने पर सुहागा जैसा काम करते हैं और रोमांस के मूड को कई गुना और बढ़ा देते हैं।

0: किनारे
1: साथ
0: इसलिए पुकारे।
1: उनकी केमिस्ट्री दिखानी थी। निर्देशक रमेश सिप्पी ये चाहते थे कि कोई ऐसा गाना बने जो बेहद रोमांटिक हो लेकिन उसमें शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो। तब पंचमदा ने राग यमन कल्याण की शरण ली। उन्होंने कहा कि शाम का ये राग समंदर की लहरों के साथ बहुत खूबसूरत बैठेगा। कमाल की बात तो देखिए, इस गाने के संगीत के लिए पंचमदा ने बहुत कम वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया।
2: जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ,
1: क्योंकि उनका मानना ये था कि इस गाने का असली म्यूजिक किशोरदा और लता जी की आवाजें और खुद समंदर की लहरें हैं। और यही वजह है कि जब आप इस गाने को आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी हवा का कोई झोंका आपको छू करके गुजर गया हो। अब इस गीत के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपको एक ऐसा गीत सुनवाते हैं जो कि करीब करीब मिलता जुलता ही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे।

भारतीय सिनेमा का एक ऐसा अनोखा उदाहरण जहां एक ही संगीतकार एक ही दशक में एक ही राग यमन कल्याण और उन्हीं दो महान गायकों किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ दो ऐसे गाने बनाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत यानी ऑपोजिट मूड के हैं। एक ही सोनिक कैनवास पर दो अलग अलग तस्वीरें, सेम कैनवास डिफरेंट आर्ट।

0: मंगेशकर और किशोर कुमार ने दोनों ही गीत दोनों ने गाए।
1: अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
0: एक में यमन कल्याण के सुंदर सुर समंदर की लहरों की तरह शांत और रूमानी है, और वहीं इस गीत में सुर वायलिन की चीख के साथ गहरे दर्द और विरह में बदल जाते हैं। ये प्यार खो देने का डर और वियोग को दर्शाता है। दोनों ही आवाजों में एक ठहराव, एक नशा और फुसफुसाहट, विस्परिंग रोमांस जैसी कोमलता है, और जैसे दो प्रेमी एकांत में बातें कर रहे हों।

और यहाँ दोनों ही आवाज़ों में खुला हुआ पुकार का भाव है, जहाँ दर्द और प्रार्थना सीधे रूह से निकलती महसूस होती है। सागर किनारे में बांसुरी, एकॉस्टिक गिटार और पानी की प्राकृतिक आवाज़ें, और यहाँ भारी वायलिन सेक्शन, सरोद और गूंजता हुआ सिंथेसाइजर।

आज हमारी जो शो है हमारा जो शो है उसमें सुरों की महफिल में हम संगीत के उस जादू की बात कर रहे हैं जिसे सुनकर के अक्सर लोगों को भ्रम हो जाता है कि धुनें चुराई गई हैं, लेकिन असल में ये हमारे रागों की खूबसूरती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद हमारे पंचम दा ने दे दिया है।

अगर। जरा सोचिए, साल 1983 में फिल्म आती है अगर तुम ना होते, और पंचमदा राग यमन कल्याण उठाते हैं, किशोर कुमार और लता जी को माइक पर बुलाते हैं और एक ऐसा गाना रिकॉर्ड करते हैं जिसे सुन करके पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाएं। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। यहाँ यमन राग के सुर दर्द की इंतहा को छूते हैं।

और ठीक 2 साल के बाद 1985 में फिल्म सागर के लिए पंचम दा एक बार फिर उसी राग यमन कल्याण को चुनते हैं। दोबारा किशोर दा और लता मंगेशकर की जोड़ी को चुनते हैं, बुलाते हैं, लेकिन इस बार वो जादू को बदल देते हैं। भारी वायलिन की जगह ले लेती हैं समंदर की लहरें, बांसुरी के सुर। वही राग जो 2 साल पहले रुला रहा था, वही इस बार आपको दिल के सुकून का जो समंदर है आपके दिल में वो बहा देता है। गाना बनता है सागर किनारे दिल की पुकारे, वो हम आपको सुनवा चुके हैं।

प्यार का तराना इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में और वही राग यमन पर आधारित गीत और आज के गीतों की यही खासियत है बड़े ही प्यारे मध्यम मध्यम से सुर वाले और हो सकता है ये गीत कुछ ऐसे गीत भी हों आप हमारी आज की लिस्ट में जो आपने कभी सुने भी ना हों। और क्या कोई समानता आपको नजर आती है इन गीतों में 7018117091 पर मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आप चाहें तो फोन भी कर सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको संगीत की थोड़ी सी भी समझ है या फिर ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा।

श्रोताओं, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज संजीव कुमार जी का भी की भी जन्म जयंती मनाई जाती है। उन्होंने कोशिश, शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, खिलौना, मंजली, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, आंधी, मौसम, विधाता, दस्तक जैसी फिल्में की हैं। उनका जन्म 9 जुलाई 1938 को मुंबई में हुआ था। हिंदी फिल्मों के एक भारतीय अभिनेता रहे। उनका असली नाम हीरा हरिभाई जरीवाल था, लेकिन फिल्म जगत में वे अपने दूसरे नाम संजीव कुमार से प्रसिद्ध रहे। संजीव कुमार के नायक, खलनायक और चरित्र कलाकार की भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। इसी के साथ आपको एक जानकारी भी दे देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया है कि नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं और प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट https://navoday.gov.in पर जाकर के अथवा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों, अध्यापकों और पात्र विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह करते हुए कहा है कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा प्रवेश विवरण नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो वहां से देख लीजिए और जल्दी से आवेदन कर दीजिए।

राग यमन के फिल्मी गानों में आमतौर पर मुख्य गायक ही हावी रहते हैं, लेकिन पंचम दा ने इस गाने के बैकग्राउंड में कोरस यानी को सिंगर्स और 70 के दशक के बड़े वायलिन और ब्रास सेशंस यानी ऑर्केस्ट्रा का भी इस्तेमाल किया है।

और मुखड़ा गाए जाने के बाद जब पीछे से कोरस की गूंज आती है तो ये राग यमन कल्याण को एक आम गजलनुमा माहौल से निकाल करके लार्जर देन लाइफ बना देती है।

नगमा हमारा गाएगा ये जमाना, हम दे चले इश्क को एक ऐसा तराना। ज़रा जादू देखिए, पिता एस डी वर्मन ने जो सुर बोए थे बेटे पंचम दा ने, उसमें ताजमहल और शाहजहां जैसी मोहब्बत की भव्यता रंग दी। सुरों की चोरी है इस भ्रम के पीछे छिपा, सच यही है कि राग यमन की ज़मीन इतनी उपजाऊ है कि हर बार वहां एक नया और नायाब सुरीला फूल खिल ही जाता है।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं आज कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में राग यमन के कुछ बेहतरीन गीत। हर कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। बंडलबाज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। अगला गीत आ रहा है चांदनी चौक फिल्म से आशा भोसले की आवाज, या यूं कहूं मखमली आवाज।

दोस्तों, अब राग यमन कल्याण की अब उस कड़ी पर आ पहुंचे हैं जो कि चोरी के भ्रम को पूरी तरह से मिटा देती है और संगीतकारों के बीच के आपसी सम्मान को दिखाती है। जब साल 1951 में सचिन देव बर्मन साहब ने ठंडी हवाएं बनाया तो उसकी धुन से एक और महान संगीतकार इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने सीधे बर्मन साहब को फ़ोन किया, लगा दिया और वो संगीतकार थे रोशन साहब। रोशन साहब ने एसडी बर्मन से बाकायदा इजाज़त मांगी कि दादा, आपने आपकी बनाई राग यमन की ये चाल इतनी कमाल है कि मैं इस पर एक गाना बनाना चाहता हूँ। बर्मन साहब हंस पड़े और बोले, अरे रोशन, सुनो तो, सुर तो सबके हैं, तुम शौक से बनाओ। और इस तरह साल 1954 में फिल्म चांदनी चौक में एक गाना पैदा हुआ जिसे आप सुन रहे हैं। गीत की विशेषता यह है कि 50 के दशक में आशा भोसले को आमतौर पर तेज या चुलबुले गानों के लिए जाना जाता था, लेकिन रोशन साहब ने इस गाने में राग यमन की जो ठहरे हुए सुरों की बंदिश तैयार की, उसे आशा जी ने बेहद शालीनता और संजीदगी से गाया। तो राग यमन कल्याण का तीव्र मध्यम एम म स्वर एक मदहोश कर देने वाला नशा पैदा करता है। आप सुन ही रहे होंगे, रोशन साहब ने इसमें सारंगी, बांसुरी और हल्के तबले का प्रयोग किया है जिसे राग यमन कल्याण का विशुद्ध भारतीय और शाम का शास्त्रीय माहौल निखर करके सामने आता है।

गाने का शुरुआती उठाव तो बिल्कुल ठंडी हवाओं जैसा ही लगता है, जिससे सुनने वालों को ये शंका होती है, लेकिन रोशन ने अंतरे की धुन को पूरी तरह से बदल दिया। अंतरे में राग यमन के एक सुर ने एक नई करवट लेते हैं, जो आगे चलकर के रोशन के संगीत की पहचान यानी कि सिग्नेचर स्टाइल बन गई। और इसी प्रयोग से प्रभावित होकर रोशन ने 14 साल के बाद 1966 में फिल्म ममता में एक और अमर गीत बनाया था, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में।

दूसरे सीरीज के साथ आगे बढ़ते हुए हम अब चलेंगे प्रादेशिक समाचारों की ओर, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। बस कुछ पलों का इंतजार।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है कांग्रेस सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही सरकार, जुलाई अगस्त में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, अनुभवहीनता व गलत नीतियों के कारण सुक्खू सरकार ने हिमाचल को दो दशक पीछे धकेला। और मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा जारी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया है। वे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाली वंदे मातरम की यात्रा पर स्थायी प्रदर्शनी और सरदार पटेल का विजन अखंडता, एकजुटता और संघवाद संगोष्ठी का अब वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किशाऊ बांध परियोजना में अपने अधिकारों की मजबूती से पैरवी की, जिससे हिमाचल के हितों की जीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से हिमाचल को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए आय होगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा सरकार होती तो किशाऊ बांध पर पुराने समझौते को स्वीकार कर लेती, जिससे प्रदेश को आर्थिक बोझ उठाना पड़ता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर एक भी आरोप नहीं है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनने और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। वे आज लोकभवन शिमला में उनसे मिलने आए एचएएस व संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने अधिकारियों को संविधान, कानून और जनहित के अनुसार निर्णय लेने की सलाह दी, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो सके। उन्होंने प्रशासन में आधुनिक तकनीक और ई गवर्नेंस से अधिक उपयोग पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार अवैध खनन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी अवैध खनन की शिकायतें आती हैं, वहां संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाती है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुलाई व अगस्त माह तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
1: निगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के जिस मर्ज भी कोने में होगी, सब एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट है चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको सख्त हिदायत दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस निगल माइनिंग में चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे सत्ता दल का कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश में मुहिम चलाई गई है, चाहे वो सिरमौर जिला है, चाहे सोलन जिला है, चाहे ऊना जिला है, चाहे हमीरपुर जिला है। 2 महीने जुलाई और अगस्त में माइनिंग बंद कर दिया, सितंबर के महीने में जाकर के जो है अब माइनिंग खुलेगी।
0: ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक करीब 15-20% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ टेंडर प्रक्रियाएं शेष हैं, जिन्हें जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।
1: वो बल्क ड्रग पार्क का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमने जो लैंड डेवलपमेंट के टेंडर्स हैं वो कर दिए हैं, कॉन्ट्रेक्टर काम कर रहा है। अभी लैंड डेवलपमेंट का वर्क, ब्रिजेस है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो राउंड अबाउट 225 करोड़ रुपए का टेंडर कर दिया गया है। लैंड डेवलपमेंट का अभी तो कोई राउंड अबाउट 15-20% काम हुआ है और कुछ एरिया में जो ट्री फेलिंग है, ट्री पेड़ों को काटने की अनुमति वन विभाग से है, उसकी रफ्तार धीमी है और हमने बार बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें तेजी लाए, ताकि हमारा बल्क ड्रग पार्क की जो इम्प्लीमेंटेशन है और स्टार्ट है वो टाइम के ऊपर हो सके।
0: नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का आह्वान किया है। वे आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल ओहर में आयोजित विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान राजेश धर्माणी ने विद्यालय के खेल मैदान व शौचालय के निर्माण व सुधार कार्य के लिए 55 लाख रुपए देने की घोषणा की। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनुभवहीनता और गलत नीतियों के कारण प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल को 2 दशक पीछे धकेल दिया है। शिमला में एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री की हठधर्मिता कार्यशैली से उनकी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास पूरी तरह से ठप है और 2000 से अधिक संस्थान बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सुबह बंद किए गए कॉलेजों को विधायकों के दबाव में शाम तक दोबारा खोलने के आदेश जारी कर व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र किसानों की आय बढ़ाने का आधार बनेगा। वे आज धर्मशाला में इस संयंत्र के निर्माण कार्य व आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि परियोजना की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।
1: ढगवार का मिल्क प्लांट है, उसकी एक रिव्यू मीटिंग जो थी हमने रखी है और जो भी हमारे ऑफिसर्स आईवान हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस करके जो टाइमलाइन हमने इस प्रोजेक्ट की एक्सीक्यूशन दी है उसके ऊपर चर्चा की गई है। जो हमने एक टाइमलाइन इनको दिया है कि इसको आपने प्रोजेक्ट को जो है एक्सीक्यूट करना है और जो बेसिक अमेनिटीज हैं जिसमें ज़्यादा करके पानी है, बिजली है और सिविल वर्क इसको बड़ी जल्दी पूरा करना है।
0: मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। इस वर्षा से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। किन्नौर जिला की लिप्पा पंचायत के पेजर नाले में आई भीषण बाढ़ से लिप्पा गांव को जोड़ने वाला पुल जलमग्न होने से आसपास कई घरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है और लिप्पा गांव का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। जिले के कूपा गांव के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से पत्थर गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव के 13 लोगों को जीरा फार्म में सुरक्षित ठहराया है। उधर सिरमौर जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं और बड़ी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है।
2: सुबह से बारिश हो रही है और अभी की स्थिति में 34 रोड्स ऐसी हैं जिला सिरमौर में जो ब्लॉक्ड हैं, इसमें सबसे ज्यादा शिलाई में 21 हैं और अभी NH हमारे खुले हुए हैं सारे। 63 DTRs अफेक्टेड हैं या डैमेज्ड हैं, वो मोस्टली पोंटा साहब एरिया के हैं और वाटर सप्लाई डिस्टर्बेड 4 जगह पे है, वो मतलब नाहन में ही ये 4 जगह है। और लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि नदी नालों से दूर रहें और जैसे आप लोग एडवेंचर पहाड़ वहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो वो भी ना करें, अननेसेसरी भी ट्रैवल ना करें।
0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में आशा वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश आशा वर्कर महामंत्री शशिलता के नेतृत्व में आज धर्मशाला में इन कार्यकर्ताओं ने स्थायी नीति बनाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 26,000 रुपये मानदेय देने और स्थायी कर्मचारी नीति के दायरे में लाने की मांग की।
3: हमारी मांगे हैं कि मान दे कि न्यूनतम राशि 26,000 दे, उसमें स्थायी नीति के दायरे में ले और हमारे से जो नेशनल प्रोग्राम वाले काम करवाए जाते हैं उनका समय पर भुगतान करे। और प्रदेश सरकार से भी एक निवेदन है कि जो बजट सत्र में उन्होंने 1,000 की राशि की बढ़ोतरी की थी वो अभी तक हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर को नहीं मिली है। दुख का विषय है और चिंताजनक भी है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री महोदय जी ने आशा वर्कर को सम्मानित किया था, लेकिन आज वही आशा वर्कर जो है सड़कों पर उतरी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन का कल प्रस्तावित शिमला दौरा खराब मौसम के चलते रद्द। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जनता की सोच को धरातल पर उतार रही है कांग्रेस सरकार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही सरकार, जुलाई अगस्त में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, अनुभवहीनता व गलत नीतियों के कारण सुक्खू सरकार ने हिमाचल को 2 दशक पीछे धकेला। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा जारी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लेकर के हम भी हाजिर हैं। बस इसी गीत के साथ हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए, यानी कि ज्योति पठानिया को। पर मिलूंगी जल्द ही किसी और दिन इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। और राग यमन का ये आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर आखिरी गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है। क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।

0: मैडम ये बैंक का ऐप लगता है।
1: केवाईसी अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, एटीएम पिन, अकाउंट नंबर डाला और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम ये ओटीपी,
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
3: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
6: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
7: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
8: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
5: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
7: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
9: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
5: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
10: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
12: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
13: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
12: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
13: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
12: है?
13: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
12: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
14: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
12: बात तो सही है।

नमस्कार, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रचिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। बीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल लॉन्च। ईरान अमेरिका सीज फायर खत्म, युद्ध शुरू। सीबीएसई स्कूलों में भर्ती होंगे 3,468 शिक्षक। चौकीदार खुद को ट्रेनिंग देगा वन विभाग। अब समाचार विस्तार से।

नवोदय विद्यालय पपरोला के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अभिभावकों, अध्यापकों एवं पात्र विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन करने का आग्रह करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी, पात्रता आवश्यक दस्तावेज तथा प्रवेश विवरण नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र अधिसूचित किया जाएगा। नई नीति राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने तथा हिमाचल प्रदेश में व्यापार में सुगमता को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि नीति को व्यापक और उद्योग अनुकूल बनाने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्य एवं आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि परियोजना के नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है, ताकि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जा सके। उन्होंने पानी, बिजली तथा सिविल कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को प्लांट की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बिजली एवं पानी की मांग का विस्तृत आकलन तैयार करने को कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीबीजे रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा की ओर से जारी आदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में मांग आधारित और सहभागी विकास कार्यों की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के होंगे विकास कार्य अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना के तहत कार्यों की पहचान कर उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशों पर कदम बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने आवास प्लस सिस्टम में एक नया पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल आरम्भ किया है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ बिना किसी पक्षपात के केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक ही पहुँचे। ईरान द्वारा होर्मुज में जहाजों पर किए गए हमलों से गुस्साए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता अब खत्म हो चुका है और वो अब ईरान के कोई ढील जो है वो नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि हमने मंगलवार रात ईरान पर जोरदार हमला किया और खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। अमरीका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। बुधवार को नाटो समिट के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ये ऐलान किया और नाटो पर भी नाराजगी जताई। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति में है। इनमें 19 श्रेणियों के 2,668 पर नियमित पदों का मामला राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है। शिक्षा मंत्री बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उनका कहना है कि 800 अस्थायी अंग्रेजी व गणित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जा रही है। प्रदेश में इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जा रहे विश्राम गृहों में पर्यटकों को बेहतरीन मेजबानी के लिए बड़ी पहल की जा रही है। इसके लिए विश्राम गृहों में तैनात चौकीदार कुक को नामी होटल मैनेजमेंट संस्थान मेजबानी के लिए तैयार करेगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए इन्हें कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी के गुर सिखाए जाएंगे। बड़ी बात ये है कि इन रेस्ट हाउस में सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूहों समेत महिला व युवक मंडल सदस्यों को भी इस विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था वन विभाग ने की है। दो बिजली
मीटरों पर सब्सिडी प्रदान करने के फैसले के बाद ई केवाईसी की राज्य भर में प्रक्रिया चल रही है। राज्य में 23 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की ई केवाईसी कर ली है, जिसमें 18 लाख से अधिक को 2 बिजली मीटर पर सब्सिडी का लाभ बिजली बोर्ड ने प्रदान किया है। हालांकि ई केवाईसी की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां भी सामने आई हैं, जिस पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कार्रवाई कर प्रभावी कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को नई दिशा देने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC ने कांच की खाली बोतलों की बायबैक योजना शुरू कर दी है। योजना से अब HPMC के उत्पादों की इस्तेमाल की गई कांच की बोतलें लौटाने पर उपभोक्ताओं को नकद प्रोत्साहन मिलेगा। निगम का उद्देश्य कांच के कचरे को कम करना, रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अगले साल राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट कंप्यूटर आधारित होगी और इसे 6 दिनों में करीब 1000 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। सूत्रों की जानकारी है, किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अगले साल से नीट पारंपरिक कागज कलम के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कांगड़ा की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में लगातार बढ़ रही ट्रैकिंग दुर्घटनाओं, ट्रैकर्स के लापता होने और बचाव अभियानों में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट हेमराज पैरवा ने आदेश जारी कर जिले के चिन्हित ट्रैकिंग रूटों पर ट्रैक शुरू करने से पहले पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 15 अक्टूबर 2026 तक प्रभावित रहेंगे। साथ ही उन्हें अपनी पूरी यात्रा योजना, संपर्क विवरण और संभावित वापसी समय भी दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ किसी भी आपात स्थिति में त्वरित खोज एवं बचाव अभियान चलाना है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग करता है अथवा निर्धारित मार्ग से बिना सूचना भटक जाता है और किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसके बचाव के लिए आवश्यक होने पर निजी रेस्क्यू टीमों की सेवाएं ली जाएंगी।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते।

0: अब समझी जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
1: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
2: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
5: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
6: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
5: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
6: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
5: है?
6: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
1: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
5: बात तो सही है।

सो ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: और इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता और चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

की आवाज बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।